کریم اتنے کریم اتنے کریم، ادھر سر جھکا ادھر راضی ہو گئے۔

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: नो पानी नो परेशानी।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ। इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी। प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर शहरयार हामिद, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जिला मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, बुध 14 अक्टूबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा।
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आजय समीहा. उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे. और अब जो है विंटर्स की आमद आमद लग रही है आज थोड़ी सी. और तो मतलब आई होप कि विंटर्स यहां पे अच्छे हों. मौसम बाहर का कैसा भी हो, दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए. और दिल का अच्छा मौसम रहे इससे जरूरी है कि आप अपना ताल्लुक अपने रब के साथ अच्छा बनाएं और अपनी सुबह का आगाज करें नमाज के साथ, कुरान शरीफ के साथ. और कुरान शरीफ जब भी पढ़े तर्जुमे के साथ पढ़े. तो हम पढ़ रहे हैं सूरह अनकबूत का तर्जुमा. आगे पढ़ते हैं आयत नंबर 37 से. औज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम. और हमने आद और समूद को हलाक किया और उनकी रिहाइश के मकामात तुम्हारे लिए जाहिर हो चुके और शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खूबसूरत बना दिए और उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोका हालांकि वो समझदार थे. और हमने कारून और हम फिरौन और हमान को हलाक किया. बेशक उनके पास मूसा रोशन निशानियां लेकर आए तो उन्होंने जमीन में तकब्बुर किया और वो हमसे निकल कर जाने वाले ना थे. तो उनमें से हर एक को हमने उसके गुनाह की वजह से ही पकड़ा. उनमें से किसी पर हमने पथराव भेजा और उनमें किसी को खौफनाक आवाज ने पकड़ लिया और उनमें किसी को जमीन में धंसा दिया और उनमें से किसी को डुबो दिया. और अल्लाह की शान ना थी कि उन पर जुल्म करे, हाँ वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे. और अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं. उनको खुद इस बात का अंदाजा नहीं है. और मसला ये है इंसान का कि उसको लगता है कि जो वो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है. और हम पलट के अपने आप से सवाल नहीं पूछते कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या हम बड़े अपने जोम में बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं. सो यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन योर सेल्फ एंड यू शुड ऑलवेज आस्क योर सेल्फ कि आप क्या कर रहे हैं. एनीवेज तो खैर, और बच्चों का जो है वो टाइम हो गया है तो हम प्ले करेंगे अभी कुछ देर में बच्चों के लिए पक्के दोस्त का ट्रैक.

0: だけど、
1: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? Schwabe Single Remedies मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और Schwabe Single Remedies भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: This program is

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: facebook.com/fm247365 FM 247 365

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और आज हम बात कर रहे हैं चेंज की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आप वक्त के साथ साथ बदल रहे हैं कि नहीं? अगर आपने कभी जिंदगी, अच्छा कुछ लोग होते हैं दे आर जस्ट लाइक वेरी फिक्सेटेड कि जी हमने तो कभी एक्सरसाइज की नहीं है तो फिर अब क्यों एक्सरसाइज करें. और ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग नई नई चीजें ट्राई कर रहे होते हैं, वो कोल्ड प्लंजेस भी ट्राई कर रहे होते हैं कि जी ठंडे पानी के अंदर जंपे मार के कैसा लगेगा, या वो दे वॉन्ट टू गो विद द ट्रेंड्स कि यार आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, पिलाटीज चल रही है या ये वाली एक्सरसाइज चल रही है तो हमें वो ट्राई करनी चाहिए, ये वाली डाइट चल रही है. तो सम पीपल दे जस्ट वॉन्ट टू गो विद टाइम्स. और कुछ लोग कहते हैं मुझे भी अभी भी 1970 के अंदर 1980 की दिहाई में ही है, और वो कहते हैं नहीं भाई हमारा जमाना ठीक था तो बस सही है ये वाली चीजें. तो आप बताएं, आर यू वॉन्ट टू चेंज, यू लाइक चेंज, आपको लगता है लोग जो है वक्त के साथ साथ बदलते हैं नहीं बदलते हैं? और तो हमें आप बताएं. और मुझे लगता है कि कुछ चीजें, जैसे मुझे भी लगता है कि यू नो वाई शुड वी चेंज, मतलब सही है तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की लाइफ या कुदरत भी जो है वो बदलती रहती है, चार मौसम भी बदलते रहते हैं और आप एक ही जैसे माइंडसेट के साथ नहीं जी सकते. आपको हमेशा सीखना चाहिए नई नई चीजें, जैसे एआई है एंड तो लोग, कुछ लोग हैं कि यार एआई इज बैड एंड यू नो एआई इज टेकिंग अवे जॉब्स, विच इज नॉट अनट्रू. एआई से बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं और काफी सारी जो ऑटोमेटेड काम्स होते हैं, जो डेटा एंट्री के मतलब काम थे, और इवन इन एजुकेशन तो यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एआई के थ्रू रिजल्ट्स बन जाते हैं, तो अब उन लोगों की जरूरत नहीं है. लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो इस क्या कहते हैं एआई के चक्कर में भूल रहे हैं कि लोगों की लाइवलीहुड्स भी जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं. और इसके अलावा कोई भी चीज ह्यूमन ब्रेन का यू नो नेमल बदल नहीं हो सकती. तो खैर ये हमारी बातें, आपकी क्या बात है आप बताएं कि आपको क्या लगता है लोग जो है वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं या उनको बदलना चाहिए या उनकी नेचर नहीं बदलती. जो बदफितरत इंसान है ना, वो मैंने एक लफ्ज सीखा भी ड्रामे से लफ्ज सीखा और वो मैंने कभी मैंने कभी वो यूज नहीं हुआ इस वर्ड बदफितरत. जो वो हीरो कह रहा होता है, ये हीरोइन को कह रहा होता है कि ये जो है ना वो एक बदफितरत इंसान है और इसने सिर्फ तकलीफ ही पहुंचानी है लोगों को. तो ऐसा है, फितरतें नहीं बदलती लोगों की, वो जो बदफितरत इंसान है ना वो बदफितरत ही रहेगा, भले लाख वो लिबादा उड़ ले कि वो बड़ा नेक है और शरीफ है, लेकिन अंदर से ना कुछ लोगों को दूसरों से बिल्कुल भी मोहब्बत और लगाव नहीं होती, आप उनके साथ कितना भी टाइम गुजार ले. खैर और इसके अलावा बस मैसेज है उमेर साहब का. उमेर साहब कैसे हैं आप, फातिमा कैसी हैं? और उमेर कह रहे हैं कि सलाम एंड गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वेडनेसडे टू यू एंड ऑल लिसनर्स फ्रॉम फातिमा एंड उमेर. वन शुड लर्न फ्रॉम द नेचर चेंजेस ऑल द टाइम एंड वी शुड ऑल्सो चेंज विद टाइम एंड पीरियड एंड वी बोथ आर फाइन. थैंक यू. कि वक्त के साथ साथ बदलना चाहिए और मेरे अब्बा का फेवरेट वर्ड एहतसाब अपना जरूर करना चाहिए. आप अपने आप से राजी नहीं रह सकते कि हाँ जो मैं हूं वही सच है. बातें हमारी जा रही है सारी हैं, अभी हम चलते हैं एक और गाने की तरफ. आइए लेट्स एंजॉय एंड फातिमा एंड उमेर, दिस सॉन्ग इज फॉर यू.

0: पानी नो परेशानी।
1: सुकून से घर बैठे मोबाइल ऐप से बच्चों की फीस और बिल्स वगैरह सब पे कर लेता हूँ। बड़ी आसानी है मीजान करंट अकाउंट से।
2: मीजान करंट अकाउंट, अब चेक बुक, डेबिट कार्ड इश्यूएंस और पहले साल के लिए SMS अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के, और इसके साथ मिले बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज। आज ही करंट अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीजान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं। मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
3: पेपा कार्ड है
4: तो फायदा है।

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: जी आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और हमारे पास आप लोगों के मैसेजेस भी हैं। मैं विश कह रही हैं कि और लोग बदलने को मौसम के बदलने से तस्बीह देना, जैसे हम जिसे हम अपना समझते हैं वो वक्त आने पर बिल्कुल अजनबी हो जाता है। हाँ जी, अब खवातीन तो ये कह रही हैं क्योंकि हस्बैंड्स भी कभी कभी बदल जाते हैं, ऐसा होता है। और अब तो ड्रामों में दिखाया जा रहा है कि कैसे हस्बैंड्स जो है जब वो बदलते हैं तो फिर वाइफ्स भी अब बदले ले रही हैं। वाइफ्स अब कहती हैं कि जी भाई अब तो पहले होती है वो चीज सफर धो रही हैं। वो कहती है नहीं भाई, अगर तुम बदल रहे हो रास्ता और तो हम भी बदल जाएंगे। और फिर जब खवातीन बदलती हैं तो फिर ये चेंज जो है ना फिर मर्दों से बर्दाश्त नहीं होता कि अच्छा हम तो बदल जाएंगे, हम तो एक से ज्यादा वाइफ भी ले आएंगे, लेकिन खवातीन ने अगर फैसला कर लिया मुझे छोड़ने का, ये कैसे हो सकता है। तो अगर आप बदल सकते हैं तो फिर आपका पार्टनर भी बदल सकता है। तो फिर इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड इंसान को होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बस जुल्म और ज्यादती करते जाएंगे और सामने वाला बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, उसके वो भी इंसान है। और अली अब्बास ने शेर भेजा है कि जी रुका हुआ है यहाँ धूप छाओं का मौसम, गुजर रहा है कोई दिल से बादलों की तरह। ओए होए होए, सुबह सुबह ऐसी शायरी, वाजी वाह, क्या बात है क्या बात है। कुछ लोग होते हैं उनका जौक जो है ना वो इस शहर और इस शहर के हालात ने बदला नहीं होता, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और आदिल हसन ने मैसेज किया, जी हाँ बिल्कुल बदल जाते हैं। मेहदी हसन साहब ने ये गीत ऐसे ही लोगों के लिए गाया था, जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। जरा इस गाने को प्ले तो करें। जी बिल्कुल, अगर मिल गया मुझे गाना हमारी लाइब्रेरी के अंदर तो जरूर हम पेश खिदमत करेंगे। और आप लोग भी मुझे मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या आरजे समिया इंस्टाग्राम पे। और थर्ड वे भी है कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें कि एचआई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसे भेज देंगे आप 3636 पर। और आप लोग मुझे ये बता रहे हैं कि क्या लोग वक्त के साथ साथ बदलते हैं या नहीं बदलते। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. मीजान करंट अकाउंट, अब चेक बुक डेबिट कार्ड इश्यूएंस और पहले साल के लिए एसएमएस अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के, और इसके साथ मिले बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज। आज ही करंट अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीजान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं। मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: facebook.com/fm247365 FM 100 traffic update.
2: FM 100 पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूँ फरोख इजहार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरतेहाल को किस तरह है। कायदाबाद दाऊद चौरंगी से वो ट्रैफिक जो मुर्तुजा चौरंगी और वहां से 11 आए इस वक्त गोदाम चौरंगी की जानी, उसके दरमियानी रास्ते पर ऑफिस टाइमिंग की वजह से ट्रैफिक स्लो मूव कर रहा है। इसके साथ साथ FM 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक वो ट्रैफिक जो गुरु मंदिर चौरंगी से इस पर जा रहा है एमजेना रोड की जानेब, अब से कुछ देर पहले ट्रैफिक का दबाव उस ट्रैक पे देखा जा रहा था गाड़ी के खराब होने की वजह से। अब उस गाड़ी को हटा दिया गया है। वो तमाम लोग जिस रास्ते को इस्तेमाल करना चाहते हैं बाइक रास्ता आसानी इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिलों की जानेब सफर कर सकते हैं। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए FM 100 पाकिस्तान।
1: This traffic update was brought to you by FM 100.

और लोग जो है बदल रहे हैं अच्छे के लिए बुरे के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों ने अपनी बातें शेयर करना खास तौर पे आपस में रिश्तेदारों से भी बहुत कम कर दी है। बिकॉज अब हमारे माशरे में पैसे कमाना, पैसे कमाते रहना और मतलब हर वक्त हर महीने टू बी एबल टू पे द बिल्स, ये क्राइटेरिया है लोगों का कि जी बस आपने जो है ना वो बच्चों की स्कूल की फीस भी खुद से पे करनी है, आपने किराया भी खुद देना है, ग्रोसरीज भी खुद से करनी है। अब एक बंदा वो कितना कुछ उठाएगा, और इतनी महंगाई है, फ्यूल की प्राइसेस इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई हैं। लेकिन लोग कितने ज्यादा स्ट्रगल करें फाइनेंशियली, मगर वो एक दूसरे से बात नहीं करते इस बारे में, अपने दोस्तों से बात नहीं करते और छुपाते हैं चीजें। रिश्तेदारों का पता होता है कि वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कोई आगे बढ़ के मदद नहीं करता। अगर कोई पूछेगा भी कि यार तुम्हारे हालात ठीक है, हाँ हाँ जी, सब ये कह रहे होते हैं, हाँ हाँ ठीक है जी ठीक है। मुझे लगता है कि मर्दों के ऊपर स्पेशली इतना ज्यादा बोझ है कि यार मतलब हर हाल में उन्हें अपना घर चलाना है, और वो फिर बोल नहीं पाते, फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और यकीन करें अगर कोई जरा सी भी चीज ओवर बजट हो जाए तो परेशानी आ जाती है, जैसे कोई बीमारी है या कोई शादी है, एंड दे कांट बिकॉज दे डोंट हैव एनी सेविंग्स लेफ्ट। और फिर इस परेशानी में लोग पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं आजकल, लोग बहुत ज्यादा सुसाइड की तरफ भी जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं यार जिंदगी से तो अच्छा है कि बंदा मर ही जाए। सिर्फ इसलिए कि वो लोग तनहा फील करते हैं, वो बात नहीं कर पाते, शेयर नहीं कर पाते। इवन माँ बाप भी ऐसे हैं कि जी हाँ फला का बच्चा देखो वो तो बाहर चला गया, और हमारे बच्चों से तो बस अपने घर के ये बिल्स बिल्स नहीं हो रहे। अम्मा है, और खासतौर मुझे अम्माओं पे तो बड़ा गुस्सा आता है, मेरी दवाइयां नहीं आई, मेरी दवाइयां नहीं आई, आपने बैठ बैठ के पहले अपने आप को इतना बीमार ही क्यों किया है? हमारी अम्माएं जो है वो जी घुटने पकड़ के बैठी हुई है, कोई मतलब लिटरली उनका कोई आउटपुट कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कुछ आंटीज का बस वो बैठी रहती है सारा दिन, और बहू पे नजर रख रही होती है कि बहू उठी है कि नहीं उठी, और ऐसी जिंदगी का नक्शा है कि बस अल्लाह बचाए। इमेजिन करें कि आपका कोई 24 घंटे वाला बॉस हो जो हर वक्त ये नजर रखे कि आप कितने बजे उठे हैं, आपने क्या नाश्ता किया है, आप कब सो रहे हैं, आपने अपना टास्क पूरा किया कि नहीं किया। एवरीबडी नीड्स अ ब्रेक, लेकिन कुछ खवातीन इस बात को अच्छे से समझेंगी कि 24 घंटे अगर आप सास के साथ गुजार रहे हैं तो उसकी हर वक्त आप पे नजर है, और हर वक्त जो घर के लोग होते हैं ना, घर के बूढ़े बुजुर्ग, उनको ये होता है जी हमारा खाना, हमारा नाश्ता हमारे टाइम पे नहीं मिला, आज वो टाइम पे नहीं मिला, और ये सारी चीजें वो ऑफिस में बैठे हुए अपने बेटे को बता रही होती है, तेरी बीवी मुझे टाइम पे खाना नहीं देती, तेरी टी, और ये जो उनकी फितरतें हैं वो नहीं बदलती। इसका बंदा क्या करे, क्या आसान नहीं होता ऐसे मतलब हर वक्त 24 घंटे आप पे कोई नजर रखने वाला इंसान। और हैट्स ऑफ टू ऑल दोज वुमेन जो फिर भी सरवाइव कर रही हैं और कह रही हैं, लेकिन मसला यही है कि इस बारे में भी खवातीन भी कहीं कहीं बहुत अपना माहौल घुटा हुआ महसूस करती हैं कि वो कंप्लेन ही नहीं कर सकती, वो बात किससे करें, वो बोलेंगे तो सब हर घर की कहानी है, वो किस किस चीज की कंप्लेन करें। अगर वो अपनी माँ से कंप्लेन करिए कि यार मेरी सास जो है ना वो हर वक्त मुझे डांटती रहती है, तो उसकी माँ भी यही कर रही होती है अपनी बहू के साथ है, तो मतलब लिटरली इट इज काइंड ऑफ सैड कि हम लोग बात नहीं कर पा रहे, लोग कितना अकेले हैं, कितने फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, और एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, बल्कि ये कि हर कोई बस अकेले अकेले अपनी जंगे जे जा रहा है। बस क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आई डोंट नो कि क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये कि अल्लाह ताला से आप अपनी दोस्ती करें, और कोशिश ये करें कि अगर आपको कोई परेशानी है तो उसमें वोकल हो, बात करें लोगों से, और लोगों को अपने ऊपर इतना सवार ना करें। अगर वो आपको लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा सख्त है आपका ऑफिस के अंदर और आपको सांस लेने में भी मसला हो रहा है, तो मे बी यू शुड चेंज द जॉब, मे बी यू शुड टॉक अबाउट इट। इसी तरह अगर खवातीन या हजरात जो भी लगता है कि घर के अंदर हवा घुटा हुआ माहौल होता है और बात नहीं हो पा रही, तो ये भी एक आपको बात करनी चाहिए या फिर आपको कहीं चले जाना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि लोगों की फितरतें नहीं बदलेंगी, अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप लोगों को उनके हाथ पे छोड़ देंगे और वो सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, बात करनी पड़ती है। खैर हमारी बातें चलिए, आप बताएं कि क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में। और मोहम्मद एजाज अली का भी मैसेज आया है, मोहम्मद एजाज अली, सबको आपकी जरूरत है सिर्फ अपनी जरूरत के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, ज्यादातर हस्बैंड्स यही फील करते हैं फादर्स के, बस सब सबको अपनी जरूरतें याद आए तो फिर अब्बा याद आ जाते हैं, वैसे तो अब्बा के साथ क्या हो रहा है, अब्बा कितने परेशान है, तो बस। और इकबाल हुसैन साहब ने भी उसी गाने की फरमाइश की, और आबिद अमीर साहब ने मुझे सुबह

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: हर शहर की मंडी में मीजान की ब्रांच है। उधर माल पहुँचा, इधर पेमेंट मिली। जब से मीजान में अपना करंट अकाउंट खोला है कोई टेंशन ही नहीं।
3: मीजान करंट अकाउंट, अब चेक बुक, डेबिट कार्ड इश्यूएंस और पहले साल के लिए एसएमएस अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के, और इसके साथ मिले बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज। आज ही करंट अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीजान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं। मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
4: पेपा कार्ड है
5: तो फायदा है।

0: बैंक, आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: FM247365

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil jo hai
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: नो पानी नो परेशानी।
1: सुकून से घर बैठे मोबाइल ऐप से बच्चों की फीस और बिल्स वगैरह सब पे कर देता हूँ। बड़ी आसानी है मीजान करंट अकाउंट से।
2: मीजान करंट अकाउंट, अब चेक बुक, डेबिट कार्ड इशुएंस और पहले साल के लिए SMS अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के, और इसके साथ मिले बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज। आज ही करंट अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीजान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं। मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
3: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
4: पेपा कार्ड है?
5: है तो फायदा है,
6: पेपाक है
7: तो ऐड टू कार्ड है,
6: पेपाक है
8: स्टोर ऑनलाइन एंड ATM हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
9: अपने टेक आइडिया को इग्नाइट करें विद प्राइम मिनिस्टर स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम, अ नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग इनिशिएटिव। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए तक और कामयाब प्रोटोटाइप्स को मार्केट रेडी सॉल्यूशंस में बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए तक फंडिंग। अप्लाई बिफोर 26 अक्टूबर एट segms.ignite.org.pk। स्पार्क द आइडिया, एलिवेट द इम्पैक्ट। अ प्रोजेक्ट ऑफ इग्नाइट, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम।
10: This program is

ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ। इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी। प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर शहरयार हामिद, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, बुध 14 अक्टूबर दिन 2 बजे, सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा। This program is

0: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: facebook.com/fm247365 FM 247 365

/FM 24/7 365 FM 24/7.

0: GAM. This time check is brought to you by
1: ATS Tubular Battery Hato.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉविंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयान मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉव जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके दो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
4: पेपा कार्ड है? है तो फायदा है।

0: 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुवत ये बेहतरीन मज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्मन होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मामलत तो नहीं कर रहे, होशियार रहे, मुहतात रहे. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हर गिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. ओनली हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मामलत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मामलत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान
0: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 247/365

0: 11:30 a.m. This time check is brought to you by
1: ATS Tubular Battery Head.
2: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ। इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी। प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर शहरयार हामिद, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची। बुध 14 अक्टूबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। डेंटल रोल बाय प्लैटिनम फार्मा।
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: Yes, everybody, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज. तो जाहिर है अब आपको बताया जाएगा तरीका कार के कैसे आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा. तो इसके लिए आपने करना कुछ यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे. साथ ही साथ जो है वो आप RJ फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी कॉमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमने स्टेटस कर दिया है अपडेट और वहां पर हमें जो है वो नसीर खोसो ने और लुक वर्ल्ड ने ज्वाइन भी कर लिया है. तो बाकी लोग भी जल्दी से अपनी हाजिरी लगाएं और हमें ज्वाइन कर लें. और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरा गला खराब है तो उसके लिए माजरत, लेकिन ऐसा हो रहा है, लग रहा है मुझे, तो मैंने कहा पहली माजरत कर लेते हैं. यार ये सूरत हाल तो उस वक्त चल रही है हर जानब हर तरफ ही. खैर जी, प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज हो गया. 3636 पे मैसेज करें या फिर आप जो है वो फेसबुक पर. तो लुकवल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम लवली RJ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम माय लवली लिस्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूं. कहती हैं कल मैंने रहीम शाह के सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी, आपने कहा मुझे समझ नहीं आया था. अच्छा ठीक है जी, इस ट्रैक को हम शामिल करेंगे. अगर आप कोई और ट्रैक हमें बता दें तो लुकवल हम उसे शामिल कर लेंगे. और बता दें अगर कोई और आप रहीम शाह का सुनना चाह रही हैं इसके अलावा, सो वी विल ऐड दैट ट्रैक. एंड उसी के साथ साथ हमारे पास एक और मैसेज भी आ चुका है. तो हमारे पास मैसेज आया है आयशा का. आयशा कहती हैं कि आप ही, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मजे में हूं, शो का वेट कर रही थी. ओके जी, आपने यहां इंतजार किया और लो जी हम आ गए. अच्छा भाई, आज आते साथ मैंने, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं देखती हूँ कि कौन कौन से दिन मनाए जा रहे होते हैं, तो उसी पर मेरी नजर पड़ी. तो आज जो है वो नेशनल डेजर्ट्स डे मनाया जा रहा है, यानी कि मीठे का दिन. मीठा का दिन इन दिस सेंस कि इंटरनेशनली नहीं लेकिन वैसे ही. और मीठे को मद्देनजर रखते हुए ना, हर एक का कहीं ना कहीं, मतलब एवरीबडी इज हैविंग अ स्वीट टूथ, यानी कि हर किसी को मीठा पसंद होता है. हालांकि वैसे पर्सनली मुझे इतना कोई खास पसंद है नहीं, लेकिन मीठे में ना एक अट्रैक्शन होती है जो आपको देखकर ना अपनी जानब ले जाती है. क्योंकि वो अगर आप बेकरी वगैरह जाते हैं तो आप देखेंगे कितनी मजेदार चीजें बनी हुई नजर आ रही होती हैं कि आपका दिल ना चाहते हुए भी आप उन चीजों को खरीद लेते हैं, भले वो टेस्ट में अच्छी हो या नहीं हो, लेकिन उनमें अट्रैक्शन बड़ी होती है. दैट इज वाई यू रियली रियली लाइक इट. तो ऐसी भी चीजें हम जो है वो बड़े शौक से खा रहे होते हैं. तो भाई आपका कोई पसंद का मीठा है तो हमें जरूर बताएं. आज काफी सारे दिन मनाए जा रहे हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैंने कहा कि जरा जाने आज शो की शुरुआत मीठी मीठी बातों से करते हैं. और सबसे पहले आपसे जानते हैं कि आपको मीठे में क्या पसंद है, जो आपको दिलो जान से पसंद है, आपका फेवरेट मीठा है. वैसे हम स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि भाई अभी तो सर्दियां आ रही हैं और गाजर का हलवा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो भी गर्मा गर्म. तो वैसे मेरा कोई स्वीट टूथ है नहीं, लेकिन फिर भी सर्दियों में गाजर का हलवा मुझे बहुत अच्छा लगता है. कि मैं जो हूं वो, एक तो मुझे गरम गरम गाजर का हलवा हो और 2-3 चम्मच उसे खाना इज लाइक कंपल्सरी. तो अभी ऐसा है कि शादियां भी हैं हमारे यहाँ, मतलब कुछ अनकरीबी, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि शादी वाला भी गाजर का हलवा खाने को मिले और घर का भी. लेकिन ये सर्दियां नहीं आ रही हैं भाई कराची में. अल्लाह बड़ी गर्मी थी आज भी और दर्जा हरारत तो देखना बनता है. और इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 36 है, रियल फील्स लाइक इज 37. एंड आई एम श्योर कि अभी मेरे प्रोग्राम के दौरान ये 38 हो जाएगा. बहुत ज्यादा गर्मी है भाई इस वक्त कराची में. और यहां मैं सर्दियों के गाजर के हलवे की बात कर रही हूं. लो यार कैसी बातें कर रही हूं मैं. क्योंकि अभी तो गर्मी चल रही है तो कहां से हम गाजर के हलवे को ले आए. लेकिन अगर आपको कोई मीठा दिलो जान से पसंद है तो आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके मैसेजेस का कर रहे हैं इंतजार. सो आप हमें मैसेज करें, अपनी पसंद का मीठा बताएं. जब तक हम चलते हैं ब्रेक की जानेब और आ जाते हैं वापस ट्रैक के साथ.
1: FM 247 365 FM 247 365

ओके जी, सो आई एम बैक अगेन, आ चुके हैं वापस और बातों का सिलसिला जारी था। अभी हमने कहा कि भाई आपको कुछ मीठा पसंद है, कुछ मीठा ऐसा जिसकी आपको बड़ी क्रेविंग होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो खाने के बाद मीठा लाजमी तौर पर खाते हैं, और वो वाले मीठे बड़े मजे के होते थे, जो कि अब तो नहीं बनते ज्यादा, लेकिन अब क्योंकि अब तो पता नहीं वो कुनाफा चॉकलेट और पता नहीं कौन सी फज ब्राउनीज एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स अब आ चुकी हैं मीठे में, वरना पहले की मीठे बड़े सादे और बड़े मजे के हुआ करते थे, जिसमें सेवैयां हुआ करती थी, दूध सेवैयां हुआ करती थी। एक हमारे यहाँ इस तरह की चीज बनती थी जो बहुत मजे की बनती थी, और बहुत छोटी थी मैं तब खाई थी, अब तो मैं बल्कि उस दिन मैंने इसे कहा भी कि ये बनाया बड़ी मजे की चीज वो लगती थी। वो क्या होता था, जो नान होती थी, नान उसको जिसे वो जब नहीं खाई तो सूख गई, मतलब थोड़ा सा ड्राई किया करते थे और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े किया करते थे, और फिर उसे घी में डाल के थोड़ा सा पकाते थे, और फिर उसमें शक्कर और दूध डाल के उसे खाया जाता था। वो इतने मजे के टुकड़े लगते थे, उसका नाम ही था टुकड़े। तो इस तरह की चीजें मना करती थी पहले मीठे में, मजे मजे की चीजें, मतलब सादी सादी रेसिपीज और बड़ी मजे की लगती थी, जैसे दूध सेवैयां, सेवैयां और क्या क्या चीजें मना करती थी। यार आई एम ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज ऑल दीज थिंग्स कि पहले के मीठे कितने मजे के और सादे हुआ करते थे। हाँ, और वो बचे हुए वो मैं समझ, मैंने कभी नहीं खाया, वो मुझे तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन लोगों के बड़े फेवरेट हैं वो, ये कि जी बॉइल्ड चावल पे जो है वो गुड़ और घी डालकर खाना, ये भी लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, बल्कि लोगों की बड़ी पसंदीदा डिश है। एंड हृदय से मेरी बात हो रही थी, मतलब शो में ही, सो शी सेड कि ये बड़ी फेमस तरीन डिश है, इसे बड़े एहतमाम से बनाया जाता है, लोग बड़े पसंद करके खाते हैं, जिसे मीठे चावल भी कहते हैं। लेकिन मीठे चावल जो है वो जर्दे को भी बहुत सारे लोग इस तरह पहचानते हैं, तो उसको जरा अगर हम दोनों का साथ जिक्र करेंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे। तो मीठा पसंद है आपको या नहीं, कितना मीठा पसंद है, कितना मीठा आप खाते हैं। वैसे तो आजकल मीठे पर ज्यादा खाने पे पाबंदी ही है, पाबंदी इन द सेंस है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जी डायबिटीज के कितने मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसको मद्देनजर रखते हुए लोग अपने दिल भी मार रहे होते हैं, और जिसकी फैमिली हिस्ट्री में है तो वो तो और ज्यादा बेचारा डरा डरा रहता है। लेकिन थोड़ा बहुत खा लेना ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा मुसलसल खाना ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो एहतियात रखें, कभी कभी क्रेविंग हो दिल चाहे तो खाएं, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर भर भर के मीठा ना खाएं, तो ये गलती आप ना करें। लेकिन फिलहाल हमें जरूर बताएं कि आपकी पसंद का मीठा कौन सा है। जब तक हम चलते हैं ट्रैक की जाने, और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: ओके, तो भाई मैसेजेस को शामिल करते हैं और हमारे पास मैसेज आया है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं मैं भी गुड हूँ। और कहते हैं कि लिसनर्स और आपको ये शेर डेडिकेट करता हूँ। ओके जी, चले जी सुनते हैं कि शेर क्या है। कहते हैं तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया, इतनी हंसी मिट्टी जाने वो कहाँ से लाया। अरे वाह भाई वाह, क्या कहने हैं शेर के, बड़ा ही खूबसूरत शेर है जो आपने हमें डेडिकेट किया है, थैंक यू फॉर दैट। कहते हैं कि जी इनके लंच में जो है वो भिंडी है, दैट्स ग्रेट। कहते हैं आपके लंच में, मेरे लंच में आज कचौरी है और दाल चावल है। यस, आज मेरे लंच में ये है। कहते हैं कि पॉसिबल हो तो ट्रैक लगा दीजिएगा। ओके, और कहते हैं आई लाइक गाजर का हलवा, रशीद खान फ्रॉम कराची किंग सिटी। ठीक है जी रशीद खान, इसे हम जरूर शामिल करेंगे। उसी के साथ साथ जरी नूर कहती हैं सलाम, कैसी हैं, बहुत सारी दुआ आपके लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। लाइट नहीं गई और भाई जरी नूर आ गई है हमारे प्रोग्राम में, दैट्स ग्रेट। कहती हैं वैसे मीठा कम खाया जाता है मगर जब मेरा दिल करता है तो मैं खोए वाली कुल्फी खाती हूँ। आई कुल्फी का जिक्र क्या कर दिया है आपने। कुल्फी तो भाई मेरी भी बड़ी फेवरेट है और अभी आपके जिक्र करते हैं मुझे याद आ गया। लेकिन मैं बताऊं मजे की बात, मुझे कुल्फियां किसी भी जगह या किसी ब्रांड ब्रांड की नहीं पसंद। मुझे कुल्फी वो पसंद है जो कि साइकिल पे कुल्फी लेके जा रहे होते हैं ना, उस वाली कुल्फी का मुझे लगता है कि कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो बड़ी मजे की लगती है। उसका जो एक टेस्ट है ना, वो बचपन से आज तक खाते हुए हम इतने यूज टू हो गए हैं कि सड़ी गर्मी में अगर आप वाली कुल्फी खा लेना तो आपको मजा ही आ जाता है। मतलब मुझे लगता है कि आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली काफी हद तक कम हो जाता है। तो कुल्फी बहुत अच्छी लगती है। अब आपके कहते कहते ना मुझे भी चीजें याद आ रही हैं कि मैं क्या क्या पसंद करती हूँ। बट नो डाउट कुल्फी इज सो गुड, वो मजे की लग रही होती है। और मुझे तो वैसे वाली पसंद है, लेकिन सबके अपनी पसंद है भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुल्फी अच्छी लगती है। तो भाई जरीन नूर ने बता दिया है, रशीद खान ने भी बता दिया, बाकी लोगों से भी उनकी पसंद जानते हैं कि वो कौन सी कुल्फी खाते हैं। अच्छा, नसीर खोसो ने हमें मैसेज करके कहा है वही गर्म पानी जो आलू को नरम करता है, वही गर्म पानी अंडे को सख्त कर देता है। कुछ लोग मुश्किल वक्त में टूट जाते हैं जबकि कुछ लोग उस मुश्किल से और मजबूत बन जाते हैं। वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, इतना आते साथ जो है वो नसीर खोसो ने इतना सख्त शेर हमें सुना दिया है। वैसे बात तो सही है, तो फैक्ट बिल्कुल ठीक है जी। तो आपके इस शेर को भी हमने शामिल कर लिया है। उसी के साथ साथ आप भी हमारे, बाकी लोग भी हमारे प्रोग्राम का जल्दी से हिस्सा बने और बताएं कि आपको मीठे में क्या अच्छा लगता है, आपका पसंदीदा मीठा कौन सा है जिसे देखकर आप अपनी डाइट, अपनी कैलोरीज किसी का ख्याल नहीं रखते और बस उसे खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो आपका मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, मुझे वहां यही मोस्ट फेवरेट से बात याद आई कि जहां कैलोरीज की बात हो, तो जब आपके कोई बाहर से रिश्तेदार आते हैं ना तो वो जो चॉकलेट्स लाते हैं तो उसे देखकर भी ना आपकी डाइट, आपकी कैलोरीज सब खत्म हो जाती है और आप खुशी खुशी वो भी खा लेते हैं, बिकॉज वो बड़ी अच्छी एक मैनिफेस्टिंग लग रही होती है, तो उसे देखकर भी यू फील सो गुड, है ना, ऐसा होता है ना। चलिए जी ब्रेक की तरफ चलते हैं, आते हैं वापस ट्रैक के साथ। तो आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि हम आपके साथ मौजूद हैं।
1: इट्स 12:45 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय फीनिक्स।

0: only on FM 100 Pakistan.
1: Yes, my friends, तो मीठी मीठी बातों का सिलसिला जारी है क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि जी आपको मीठे में क्या पसंद है, तो आप हमें बता सकते हैं। जरीनूर कहती हैं कि आज लाइट हम पर मेहरबानी हो गई, लाइट की मेहरबानी हो गई, सही बात है, और नहीं गई, और मुझे भी वही वाली कुल्फी बहुत पसंद है ना। वो कुल्फी मेरे ख्याल से सबकी बड़ी फेवरेट है क्योंकि वो एक ओजी कुल्फी है, बड़ी मशहूर तरीन, मशहूर जमाना कुल्फी है वो।

पीसफुल टाइम, तो क्या आप कभी लेकर गए हैं या लेकर जाएंगे? ये सोचने के बाद आपने सोचा है कि हाँ क्यों ना लेकर जाया जाए, बहुत टाइम से लेकर नहीं गए, तो बिल्कुल लेकर जाएं और हमें बताएं कि जी हाँ आप लंच टाइम स्पेशल जो है वो अपना कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। और भी बहुत सारे दिन मनाए जा रहे हैं, इसी के साथ साथ हमारे पास मैसेज आ गया है, कहते हैं आप ही मीठा तो मुझे इतना पसंद है कि कुछ ना मिले तो मैं शक्कर ही खा लेता हूँ। ओ माय गॉड, इट्स अ क्रेजी फैन, इतना पसंद है मीठा के कुछ ना मिले तो शक्कर ही खा ली जाती है। अच्छा, लोग ऐसा करते हैं अपनी मीठे की क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए कि दे यूज टू ईट शुगर ऑल्सो, बट दिस इज नॉट द राइट वे, इतनी शक्कर ना खाएं, ये सेहत के लिए मुजर है, तो एहतियात करें। लेकिन अपना मीठा पसंद क्या है वो भी बताएं। और भी मजीद बातें करते हैं, लेकिन ट्रैक शामिल करते हैं, और ये ट्रैक हमने काफी टाइम से शामिल नहीं किया, तो आते हैं बाद, इसके बाद आते हैं वापस।

in tune with the lunchtime special on the big one, FM 100.

0: station for maximum music.
1: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Ji haan, main aa chuki hoon wapas, aur aap logon ke saath guftugu ka silsila hamara jari hai. Meethe par baatein chal rahi thi ki ji aapka pasandeeda meetha kaun sa hai, aur maze maze ke meethon ki jo hai wo naam is waqt liye ja rahe hain hamare program mein bilkul, jise hum shamil karenge. Aur sirf meetha hi nahi janenge, balki aur bhi bahut sari baatein hain, kyunki abhi to lunch janna bhi baki hai ki aapke lunch mein kya hai. तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत ही होती है कि एक अदर ट्रैक हम आपको डेडिकेट करते हैं और उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. तो चलें जी, पहले अपनी रिवायत को करते हैं कायम और फिर वापस आकर करते हैं आपसे मजीद गुफ्तगू.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: It's not the system, but it's love for money.
1: जी तो वापस आ गए हैं हम और वापस आते हुए लुकपल का मैसेज भी आ चुका है जिसे हम करेंगे शामिल। तो कहती हैं लुकपल कि जी मुझे भी इतना मीठा पसंद नहीं है लेकिन मैं रबड़ी खीर जो है वो थोड़ा शौक से खा लेती हूँ। ओके जी ग्रेट हो गया है। कहती हैं बहुत मुश्किल से मैंने दाल बनाई है आज इलेक्ट्रिक स्टोव पर, वो भी ज्यादा गर्म नहीं होता क्योंकि हमारे एरिया में कल से गैस नहीं है। कल रात को बाहर से खाना मंगवाया था, बहुत टेंशन है। कल दोपहर को आ रही थी फिर उसके बाद नहीं आई। अल्लाह ये तो बड़ी बहुत ही ज्यादा सैड सूरत हाल है कि गैस के बगैर काम तो भाई मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और ऐसा पता चाह रहा था ना कभी आप एक कप चाय पी लें, कभी आप जो है वो नूडल्स ही बना लें, वो इंस्टेंट वाले जो दो चार मिनट में बन जाते हैं। तो मतलब अब आपको लगता है कि आप कितने बेबस हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। और जब इलेक्ट्रिक की चीजों का इस्तेमाल करने की बात आती है तो आप ये भी सोच रहे होते हैं कि जी इसी के साथ साथ जो है वो बिल भी बहुत आएगा। और बिल को मद्देनजर रखते हुए हम डरे हुए रहते हैं कि कुछ इस तरह की चीज इस्तेमाल ना करें जिससे बिल बहुत ज्यादा आए। वेरी सैड लुक बल्ड, आई प्रे फॉर यू कि आपका ये मसला जो है वो जल्दी हल हो जाए। यार बड़ी मुश्किल से बेचारी ने दाल बनाई है और अल्लाह बेचारी हर खवातीन को मैं कहती हूँ अवार्ड मिलना चाहिए बिकॉज वो इतनी मुश्किलात से आपके लिए खाना बनाती है ना, ये सिर्फ वही जानती है। क्योंकि गैस का मसला कोई आज या कल का नहीं है, रोजाना की बुनियाद पर हम जो है वो उस मसले का शिकार रहते हैं। तो उसमें कोई काम कर आपको खाना दे रहा है ये बहुत बड़ी बात है। सो हाईली अप्रिशिएटेड हैं भाई तमाम खवातीन क्योंकि वो इस मुश्किल टाइम में आपके लिए खाना बना रही हैं। और अभी तो भाई सर्दियां आई नहीं है, मैं तो सोच रही हूँ कि अल्लाह फिर क्या होगा क्योंकि सर्दियों में तो गैस ना हमारे साथ आंख मचोली खेल रही होती है। आई गई आई गई और ज्यादातर गई है, मतलब ज्यादातर वो इनविजिबली रहती है। कभी आपकी किस्मत से आपको कभी दम की आंच मिल जाती है, कभी कुछ मिल जाती है। और मैं तो अभी से बड़ी परेशान हूं कि अल्लाह सर्दियों में क्या होगा कुछ। और हर दफा का ये रोना होता है, यानी कि ये तीन चार महीने द मोस्ट टॉर्चरस्ट मंथ होते हैं जो अब हम एक्सपीरियंस करेंगे। अल्लाह पाक रहम करे हम सब पर। तो भाई जरीन नूर कहती हैं कि उनके लंच में आज है आलू कीमा और दाल फ्राई चना की। ओके ग्रेट हो गया है जी। और हमें जो है वो साकिब भी मैसेज करते हैं, कहते हैं आप ही आज कोरमा बना है शीरमाल के साथ। वाओ कोरमा और शीरमाल का भी एक मजे का कॉम्बिनेशन है और बड़ा अच्छा लगता है। शीरमाल हो या ताफ्तान हो तो उसके साथ खाने में ना आपको बहुत सेटिस्फाइंग लगता है वो। बिल्कुल ठीक है जी। रशीद खान ने हमसे इस ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी, शामिल करते हैं और आते हैं वापस इस ट्रैक के बाद।

0: पेपा कार्ड है?
1: है तो फायदा है,
2: पेपाक है
0: तो ऐड टू कार्ड है,
2: पेपाक है
3: स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365. Afternoon.

जी मेरे दोस्तों, तो हम आ चुके हैं वापस और आप लोगों से बातें भी हम कर रहे हैं, आप लोगों की पसंद का मीठा भी जान रहे हैं और इसी के साथ साथ क्योंकि आज मजीद इंटरेस्टिंग डेज बनाए जा रहे हैं तो उसका भी जिक्र कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमें लुक वर्ल्ड ने बताया कि शी इज वेरी सैड क्योंकि उनके घर में गेस्ट नहीं है एंड वी आर ऑल्सो वेरी सैड। कहती है फाकर का कोई सॉन्ग आ जाए तो प्ले कर दें, शायद गेस्ट आ जाए। आय हाय, चलें जी, अब आप ये कह रही है ना तो फिर मुझे इसमें फाखर का जो एक ट्रैक है वो याद आ गया है और शायद हो सकता है कि इस ट्रैक को सुनने के बाद आपकी गैस भी आ जाए। आप इसे एंजॉय भी करेंगी और दिली दुआ भी करेंगी कि वो जो है मसला हल हो जाए, यानी कि कैसा जाए। खैर जी, इसी के साथ साथ जो है आज एक और कौन सा दिन मनाया जा रहा है, मैंने चलो देखा। अच्छा, आज इंटरनेशनल टॉप स्पिनिंग डे भी मनाया जा रहा है। अच्छा ओके, टॉप स्पिनिंग डे में ना दे वर शोइंग समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये स्पिन गेम्स हमने बहुत सारे खेले हैं और इससे बेसिकली आसान उर्दू की जबान में कहा जाए तो लट्टू हम लोगों ने बड़ा खेला है अपने बचपन में, उसे खेले में बड़ा मजा आता था। और अब मैं देखती हूँ कि बच्चों की लाइफ में कोई इस तरह के गेम्स मौजूद ही नहीं है, वो बस मोबाइल में पता नहीं कैंडी क्रश खेल रहे हैं या क्या खेल रहे हैं, लेकिन और कोई फिजिकल गेम्स नहीं होते, न फुटबॉल न क्रिकेट जितना आम होता था। मतलब गलियों में रश हुआ करता था, हर जाने बच्चे खेल रहे होते थे, अंकल आंटियां जो थे वो डांट रहे होते थे बच्चों को सजा देने के लिए, उनकी बॉलें रख लिया करते थे कि तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, ये सोने का वक्त है, हमारे घर में कुछ काम हो रहा है, आराम कर रहे हैं, और बड़ी डांटे पड़ा करती थी बच्चों को क्योंकि वो खेला बहुत करते थे, उनकी बॉलें कभी किसी के घर जा रही होती थी, कभी शटल जा रही है, तो इस तरह की एक्टिविटीज हुआ करती थी। जो थे हमारे नेबर्स वो आपकी चीजें रख लेते थे, फिर अपने अम्मा अब्बा से रिक्वेस्ट करते थे या अंकल आंटी को बड़ा पैम्पर करते थे कि अच्छा सॉरी अब हम ये नहीं करेंगे, तो इतना मजे का वो टाइम हुआ करता था। लेकिन नाउ डेज आई कैन नॉट सी एनीबडी इज प्लेइंग आउटसाइड क्योंकि कोई है ही नहीं बाहर खेलने वाला ये गेम्स खेल रहे हों। बहुत सारे तरह के गेम हुआ करते थे, आंख मचोली, पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और कितने सारे, और मुझे तो फिलहाल पैलदूश ये बड़े शौक से खेला जाता था। तो इन गेम्स की वजह से बच्चे फिजिकली फिट भी बहुत हुआ करते थे और एक अच्छी एक्टिविटी हम सबकी लाइफ में होती थी। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी इन गेम्स को खेला होगा। पकड़म पकड़ाई में टू टाइम्स होता था कि भाई टू टाइम्स का ब्रेक है, जैसे कि आपको पकड़ने आ रहा हो आप टू टाइम्स ब्रेक ले लें ताकि जो है वो आपकी बचत हो जाए। तो बड़ा मजे का एक टाइम होता था बचपन का, लेकिन अब ना ये टाइम बहुत कम देखने में आ रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं नहीं जानती, लेकिन जरूरी है कि अपने जो है वो बच्चों को आप लोग जरा मोटिवेट करें, बाहर खेलने के लिए भेजें, दोस्त बनाएं ताकि वो भी थोड़ा फिजिकली फिट हो क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आज बच्चे तो बच्चे, बड़े तो कम ही मूवमेंट करें, लेकिन आप बच्चे भी ऐसे हो गए तो हम नहीं चाहते कि एक सोसाइटी जो है वो तबाह हो। तो प्लीज अपने बच्चों को खिलवाएं, बाहर लेके जाएं, उन्हें गेम्स का बताएं, पुराने गेम्स का बताएं, नए गेम्स का बताएं। और हेल्प भी एक गेम होता था, वो भी बड़े मजे का होता था। और कौन कौन से मुझे भी सारे गेम्स याद आ रहे हैं, अल्लाह कितना मजा आता था, और अब ऐसे कोई गेम्स नहीं खेलते हुए नजर आ रहे हैं। खैर जी, ट्रैक की जानब चलते हैं, एंजॉय करें आप लोग ये ट्रैक। तो ये हम आपको डेडिकेट कर रहे हैं लुक वर्ल्ड, शायद अल्लाह करे आपकी गैस आ जाए।

अल्लाह करे आ जाए तू भाई, तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि लुकपल क्या गैस आ जाए, और अल्लाह करे आ ही जाए। और वो खुद भी हमें मैसेज करके दिए जी, अल्लाह करे आ ही जाए, सच में अल्लाह करे आ जाए तो इंशाल्लाह आएगी, जरूर आएगी। सो होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम भी ये उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह जल्दी से गैस आ जाएगी। अच्छा भाई, सो आज अगर किसी की बर्थडे भी है तो आपको हैप्पी बर्थडे टू यू जी हमारी जानिब से, कि आप जिए हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। एंजॉय करें आप लोग अपनी जिंदगानी को, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, किसी से नाराजगी अख्तलाफात हैं तो उसे दूर करने की कोशिश करें, ये बहुत जरूरी है, और पहल करने में कोई मजायका नहीं है। तो अगर गलती आपकी है या उनकी है, जिसकी भी, अगर आप पहल कर देंगे तो इसमें कोई मजायका नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हम अक्सर अवकात इस चीज को समझ नहीं पाते और हम लड़बड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए यार, दोस्ती करें और मामलात को जल्दी से हल करें। और मीठे पर बात हो रही थी, तुम्हारे पास एक और मैसेज आया, आयशा कहती है कि आप ही, मीठा तो मेरा फेवरेट है, चॉकलेट केक जब हो तो मैं कुछ नहीं देख पाती। अल्लाह, चॉकलेट केक से फुल ऑन ऑब्सेशन है। ठीक है जी, बाकी लोग भी अपनी पसंद का मीठा बताएं, क्योंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है, तो हम आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। चलते हैं ट्रैक के जाने, बातें वापस ट्रैक के बाद।

0: ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ। इस प्रोग्राम का मौजू होगा सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी। प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर शहरयार हामिद, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, बुध 14 अक्टूबर दिन 2 बजे सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। डेंटल रूम बाय प्लैटिनम फार्मा।
1: Us on facebook.com/FM247365.

0: us on facebook.com/FM247365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
0: FM 100's time check. It's 2 p.m.

0: Hello, hello, hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan, and aap sun rahe hain program Dental Room, which is brought to you by Platinum Pharma, and aap sun rahe hain program Oral Health ki baat Platinum Pharma ke saath, which is brought to you by Platinum Pharma. So we have Dr. Shehryar Hamid with us, BDS FCPS consultant, oral and maxillofacial surgeon, Jinnah Medical and Dental College, Karachi. Assalamu alaikum, Dr. Saab.
1: Wa alaikum assalam.
0: Thank you so much for being here, and welcome to FM 100 Pakistan.
1: Thank you so much for inviting.
0: Okay, so Dr. Saab, aaj hum oral health ke hawale se jo hai wo baat karne wale hain, and this show is basically brought to you by Platinum Pharma. So bahut mazey ke sawalat jo hain aaj hum Dr. Saab se discuss karenge about oral health and dental implants ke hawale se, and also daanton ki sehat ke hawale se. So Dr. Saab, jo mera aapse pehla question hai, it is about ki basically sabse pehle hamare listeners ko bataye ki dental implants jo basically hote hain, kya wo har mareez ke liye jo hai munasib hote hain jinke daant bhi nikal gaye hon?
1: सो बेसिकली इम्प्लांट को ना पहले समझने की जरूरत है. व्हाट इज अ डेंटल इम्प्लांट? हमारे मुंह में दांत है, दांत जो रुके हुए हैं मुंह में, इट्स बिकॉज ऑफ देयर रूट्स. अब डेंटल इम्प्लांट एक वाहिद चीज है जो रूट को मिमिक करती है. अब इम्प्लांट लगाते हैं, इट्स रिप्लेसेस द रूट. उसके ऊपर जो दांत लगता है, इट बिहेव लाइक सेम दांत जैसा. तो सबसे जो बेस्ट रिप्लेसमेंट है इज इट्स इम्प्लांट.
0: ओके, सही. अच्छा, इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि इम्प्लांट्स जो हैं बेसिकली वो सबके लिए सेफ होते हैं, या अक्सर लोगों को इस चीज का जो है एक तो वो रिस्क सोच रहे होते हैं कि ऑल द डेंटल इम्प्लांट्स आर दे सेफ और नॉट?
1: इसमें दो चीजें आ जाती हैं. सबसे पहली चीज है कि इम्प्लांट लग सकते हैं या नहीं फॉर द पेशेंट कंसर्न्स.
0: ठीक है,
1: अगर पेशेंट की डायबिटीज कंट्रोल में है या कोई मेडिकल कंडीशन है उनके जो फेवर नहीं करती, तो इम्प्लांट उनमें आप अगर लगाएंगे तो इट विल फेल. सेकेंड जो चीज आ जाती है कि डेंटिस्ट इतना या जो ओरल सर्जन हैं वो इतना वेल एफिशिएंट नहीं हो कि वो इम्प्लांट सही तरीके से लगा सके. क्योंकि ट्रेनिंग के बाद, डिग्रीज के बाद, यू नीड स्पेशल कोर्सेज जो इसमें स्पेशलाइज होके आप उसको इम्प्लांट लगाएं. अगर सही पेशेंट पे सही बनता इम्प्लांट लगाएगा तो इट विल नेवर फेल.
0: सही, सही. अच्छा, आमतौर पर जो है वो डेंटल इम्प्लांट में जो है कितना वक्त लगता है? क्योंकि मोस्टली जो है पेशेंट्स इस हवाले से भी काफी कंसर्न होते हैं कि इसमें कितना टाइम लग जाता है, और मोस्टली जो है इसका दौरानिया कितना होता है, कितने अरसे का होता है, तो इस हवाले से थोड़ा सा मैं लिसनर्स को बताया.
1: सो बेसिकली इम्प्लांट उसी वक्त लग सकता है जब आपका दांत निकलेगा.
0: अच्छा,
1: लेकिन इम्प्लांट हड्डी में बंद होगा, इट्स लाइक नीचे वाला, अगर आपके नीचे वाले जबड़े में है तो उसको 3 महीने एटलीस्ट छोड़ना होता है, और अगर ऊपर वाले जबड़े में है तो 5 से 6 महीने छोड़ना होता है कि हड्डी और वो आपस में जुड़ जाएं. उसके बाद आप उसके दांत लगाते हैं. अब इसमें कोई कोताही होती है, कोई अगर जल्दी करते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको आप जल्दी भी दांत लगा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पैटर्न है इट्स फॉलोज लाइक दिस. उसमें इतने टाइम बाद अगर दांत लगाया जाए तो इट विल हील एंड इट विल सर्वाइव लाइक लाइफ टाइम.
0: सही. डॉक्टर साहब, ये बताएं कि डेंटल इम्प्लांट जो है वो जरूरी क्यों है? मतलब व्हाई शुड वी गो फॉर अ डेंटल इम्प्लांट, एंड क्यों कराना चाहिए, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं?
1: सो बेसिकली दांत को रिप्लेस करने के देयर आर 3 कॉमन मेथड्स. एक आपका इम्प्लांट है जो बीच में एक स्क्रू लगेगा, उसके ऊपर दांत आ जाएगा. सेकंड, आगे और पीछे वाले दांत को छोटा करें और उस पर आप ब्रिज लगाएं. एंड थर्ड, निकलने डलने वाला दांत हो. अब जो सेकंड ऑप्शन है, फिक्स में दो ही ऑप्शन हुए, फर्स्ट एंड सेकंड. सेकंड ऑप्शन में आप दो मजीद दांत खराब कर रहे हैं.
0: सही.
1: तो बेस्ट इज इम्प्लांट जिसमें आपको योर दांत खराब नहीं करे. आपके हड्डी की मदद से जैसे नेचर को फॉलो कर रहे हैं वैसे ही यूज करेंगे तो लाइफ टाइम वो चीज अच्छी रहेगी.
0: सही, सही. एंड इसी के साथ साथ जो है हमारे लिस्टनर्स को ये भी बताइए कि डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं, अगर इनकेस अगर किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं तो उसके सबसे बेसिक रीजन्स क्या होते हैं?
1: जो मैंने शुरू में ही बताया कि दो रीजंस हैं. या तो सही असेसमेंट नहीं की गई पेशेंट की, कि उनको कोई ऐसा मसला था जो पूछा नहीं गया, या पेशेंट नहीं बताया, इस वजह से उनकी हड्डी ने फेवर नहीं की उस चीज को जो बाहर से लगाई गई. सेकंड, लगाने वाला इतना एक्सपर्ट नहीं था, क्योंकि इम्प्लांट्स इतने मिसयूज हो रहे हैं आपकी कराची और इवन वर्ल्ड वाइड.
0: एग्जैक्ट,
1: ऐसे ऐसे में लोग इम्प्लांट लगा रहे हैं क्योंकि इज इजी मनी. आप बोलते हैं सेम डे पे आपको पेमेंट हो जाती है, बाद में जाके मसले होते हैं तो वो पेशेंट कहीं और बैठा होता है और डॉक्टर कहीं और बैठा होता है. तो सही बंदा लगाएगा, सही तरीके से लगाने का क्या सीन है कि इम्प्लांट जब आप हड्डी में डालें तो चारों तरफ हड्डी होनी चाहिए.
0: okay.
1: या अगर नहीं है तो एक तरफ आप हड्डी उसको लगाएंगे.
0: सही.
1: आप नहीं लगा रहे, उसको एक्सपोज रख रहे हैं, तो वो चीज निकल जाएगी वक्त के साथ और रुकेगी ही नहीं.
0: सही, सही. अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं भी आपसे करने वाली हूँ. इट्स अबाउट अ विस्डम टूथ, यानी अकल दांत. सो बहुत, एक तो जाहिर है जब आपकी अकल डार आ रही होती है तो इसमें बड़ा ज्यादा ये पेनफुल प्रोसेस हो जाता है, और क्योंकि ऑब्वियसली इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती, ये थोड़ा सा लाइक एल्डरली एज में भी हो सकती है या यंगहुड में भी आ जाती है। तो इसका थोड़ा सा बताएं कि इसका जो एक प्रोसेस होता है इसको निकालना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से लोग इसके फैक्ट्स और मिथ्स इस तरीके से हैं कि निकालनी जरूरी भी होती है, कुछ कहते हैं कि नहीं निकालो इसको, रहने दो, तो क्या करना चाहिए?
1: सो बेसिकली ये पहले चीज समझने की जरूरत है कि इस अभी 10 साल 20 साल में ये मसला क्यों आया है, पहले क्यों नहीं होता था, लाइक 50 साल पहले 60 साल पहले। पहले अगर हम देखें जितना ह्यूमन नेचर में फर्क आया, ह्यूमन की मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में फर्क आया है कि पहले जबड़े बड़े होते थे अभी छोटे हैं, क्योंकि डाइट चेंज हो गई है। पहले हार्ड डाइट होती थी, अभी वो सॉफ्ट डाइट फास्ट फूड वगैरह भी लोग आ गए हैं, तो अभी जबड़े में इतनी जगह नहीं है कि आप इतने दांत अकोमोडेट कर सकें। मोस्टली क्या होता है, अगर किसी का दांत सही आ गया तो वेल एंड गुड, उसकी उम्र है लाइक 18 to 22 इयर्स में वो आ जाता है। लेकिन अगर वो फंस जाता है तो वहां पे एक तो खाना फंसता है, प्रेशर पेन होता है, और खाना फंसने की वजह से सबसे मसले की वाली जो बात है, आगे वाला दांत खराब होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसको निकलवाने का फायदा यह है कि आपके बाकी जो दांत है वो सेट रहेंगे, उनमें कोई मसला नहीं होगा। आइडियली तो वैसे निकलवाए तो बेहतर है, मैंने भी अपने निकलवाए हुए हैं, तो ताकि लाइफ टाइम कोई मसला नहीं हो।
0: सही मतलब निकलवाना जो है वो जरूरी कुछ केसेस में। अच्छा, हम अपने लिसनर्स को बताते चलें कि आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ, विच इज ब्रॉट टू यू बाय प्लैटिनम फार्मा, एंड द शो इज कॉल्ड डेंटल रूम, और डॉक्टर शेरियार हामिद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम डेंटल इम्प्लांट्स के हवाले से बात कर रहे हैं अपने शो में, एंड ऑल्सो हम ओरल हेल्थ के हवाले से भी बात करेंगे, इसमें दांतों की सेहत के हवाले से बात करेंगे, और डॉक्टर साहब से जो है मजीद सवाल हम लोग कर रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, साथ में ये भी बताइए कि ऐसे लाइक कौन से अवामिल होते हैं जिसमें यह तय करना जरूरी होता है कि नाउ इट्स टाइम के अब जो है सर्जरी की जरूरत हो गई है अकल डार को निकलवाने के लिए, क्योंकि वो जाहिर एक आप जो है डेंटिस्ट जो है वो प्रॉपर एक दांत की सिचुएशन जो है वो चेक कर रहा होता है कि आया अभी जरूरत है इस चीज की या नहीं, तो थोड़ा सा सवाल है।
1: तो बेसिकली स्टार्ट जब आप 18 साल के होते हैं तो उसमें अगर आप चेकअप करा रहे हैं नॉर्मली तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाता है। अगर आप चेकअप करा रहे हैं, आपका दांत पूरा मुंह में सीधा सीधा आ रहा है तो निकलवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी एंगुलेशन, उसके आने के पाथवे में कोई डेफर है, कोई रुकावट है, या वो आधा आया है, उसके ऊपर आपके मसूड़े आ चुके हैं जो कि बहुत बड़ा मसला, उसको हम पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं, जिसके ऊपर आप खाना खाते हैं, ऊपर वाला दांत उस पर हिट करता है, बहुत गंदा इन्फेक्शन और पेन होता है, जो कि 80% लोगों में कराची में और पाकिस्तान में होता है। अगर ये मसले हैं तो निकलवाना चाहिए। अगर सीधा सीधा आ रहा है, उसको कोई पाथवे में एंट्रेंस नहीं है, तो देन लीव इट एज इट इज, जब तक कोई मसला हो।
0: सही अच्छा, जब ये दांत निकलवाया जाता है तो डॉक्टर्स जो है काफी चीजें आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। एक तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग जो हो जाती है वो खतरनाक किस्म की, वो जो पेन होता है वो तो बहुत पेनफुल वैसे ही होता है, और वो स्वेलिंग एक अलग से नजर आ रही होती है, डिस्प्ले हो रही होती है आपके फेस पे। तो डॉक्टर्स जो हैं बेसिकली अपने पेशेंट्स को क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या हिदायत करते हैं कि अगर आपने अपना दांत निकलवा लिया है तो ये चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए।
1: सो बेसिकली दांत, अकल दाड़ और बाकी दाड़ों को निकलवाने में क्या फर्क होता है कि जो अकल दाड़ होती है थोड़ी सी हड्डी में अंदर होती है, अब उसको निकलवाने के लिए थोड़ी सी हड्डी हमें ट्रिम करनी पड़ती है। अब बॉडी में कहीं भी आप हड्डी को छेड़ते हैं वहां पे स्वेलिंग होती है, जैसे किसी को फ्रैक्चर होता है स्वेलिंग होती है, बट इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। हम क्या बताते हैं, आप पेशेंट को एजुकेट कर लें कि 2-3 दिन बाद स्वेलिंग होगी, ठीक है, और विद इन 10 डेज स्वेलिंग रिजॉल्व हो जाएगी। जब स्वेलिंग होगी तो मुंह भी कम खुलेगा, और जब स्वेलिंग सेट होगी तो मुंह भी सही खुलेगा।
0: सही
1: कोई इसमें अगर आप एजुकेट नहीं कर रहे और पेशेंट को अचानक स्वेलिंग होगी, उसमें मसला होता है कि पेशेंट परेशान हो जाते हैं। एंड एवरी हीलिंग इज रिलेटेड टू द स्ट्रेस, जितना पेशेंट स्ट्रेस में आएगा हीलिंग उतनी कॉम्प्रोमाइज होगी, उतने बाकी इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो नहीं कर पाएंगे।
0: सही तो कोई ऐसी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसके हवाले से कि जैसे कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपने अवॉइड करने हैं कि वो यू नो स्वेलिंग को इंक्रीज ना करें, या कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो कुछ ऐसी होती है
1: इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के। बेसिकली आपका एक खड्डा है जिससे आपने दांत निकाला है, ठीक है, और वहां पे ब्लड क्लॉट है, तो आपको ऐसी चीजें शुरू में अवॉइड करनी होती है जो उसमें अंदर चली जाएं। जैसे आप बिल्कुल बारीक बारीक, जैसे अगर आप राइस वगैरह खा रहे हैं तो मोस्टली उसमें अंदर जा रहे हो, निकल नहीं पाते, तो सॉफ्ट डाइट देनी होती है बहुत शुरू में, लाइक 2 to 3 डेज. उसमें फायदा यह होता है कि वो सॉकेट आपका क्लीन रहता है जहां से आपका दान निकला है. सेकंड, ठंडी चीजें इस्तेमाल करनी होती है कि वहां पे ज्यादा बर्निंग ना हो. okay. और स्पाइसी चीजें अवॉइड करनी होती है. ये जब चीज 3-4 चीजें आप अवॉइड करते हैं, 2-3 दिन में इतना उस पर गैप फिल हो जाता है कि आप माउथ वॉश यूज करने से जो भी चीज जाएगी वो इजिली निकल आती है.
0: सही सही, मतलब इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है. अच्छा, नॉर्मली भी अगर हम ओरल हेल्थ के हवाले से डॉक्टर साहब थोड़ा बात करें, तो नॉर्मल जिंदगी में जो है, मतलब अगर कोई भी दांतों का मसला नहीं है और फर्दर फ्यूचर में इसको अवॉइड करने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो दांतों की सेहत के लिए मेन होती हैं, वो आप हमारे लिस्टनर्स को बताएं.
1: सबसे बेसिक्स और सबको पता भी है लेकिन सब सही करते नहीं, सब ब्रशिंग.
0: एग्जैक्टली,
1: ब्रशिंग कोई सही नहीं करता. कब करनी चाहिए? सबसे पहली चीज यह है कि ब्रशिंग की टाइमिंग्स क्या है और कितने देर तक करना चाहिए. इट्स लाइक हाफ ए मिनट इज इनफ अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं. लाइक राउंड एंड राउंड हर दांत को हर तरफ से एक बार ब्रश करना है.
0: सही
1: टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नाश्ते के बाद करना है, 2 अगर टाइम कर रहे हैं तो नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले. दीज 2 टाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लोग ब्रश करते हैं, नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं, वो सारा दिन उनके मुंह में वो चीजें फूड पार्टिकल्स स्टोर्ड होती हैं जिन पे बैक्टीरियाज आके दांत को खराब करते हैं. तो इस चीज की बहुत जरूरत है. सेकंड फ्लॉस. फ्लॉस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको अगर दिमाग में है कि ब्रशिंग से मेरे दांत बीच से साफ हो रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होते. आपको फ्लोराइड जो कि रिकमेंडेड है बाहर से ओरल बी और बाकी चीजों के मिलते हैं, फ्लोराइडेटेड जो होते हैं वो यूज करने हैं. ये 2 चीजें जिसने सही किया वो हमारे पास जब आते हैं तो दे आर टोटली नॉर्मल, कोई चीज उनमें खराब नहीं होती. इसके साथ साथ अगर विजिट्स का बोला जाए तो लाइक ईयरली 2 बार विजिट एवरी 6 मंथ्स में जैसे बाहर के प्रोटोकॉल से वो करना चाहिए. क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिनको प्रिवेंट करने से बेहतर होती हैं कि आगे जाके वो मसला बन जाए.
0: सही सही. अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ बताएं, जैसे सर्जरी के बाद जो है अगर दांतों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, सही है, और स्वेलिंग जो है वो ज्यादा है, कम नहीं हो रही है, तो कब मतलब जो है वो इस चीज को खतरे की अलामत समझना चाहिए कि अब जाके नहीं, अब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है क्योंकि ब्लीडिंग नहीं रुक रही है क्या?
1: बिल्कुल जी. कोई भी दान निकालें, कोई भी दान निकालने के बाद जो बड़ी बड़ी एहतियात होती है वो ये होती है कि आपको 12 या 24 घंटे तक थूकना नहीं है, स्ट्रो यूज नहीं करनी. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें एक प्रेशर क्रिएट करती हैं कि अंदर से फ्रेश ब्लड आता रहता है. आप जितना थूकते रहेंगे वो ब्लड आता रहेगा, सारी सारी रात आपको वो तंग करेगा. ब्लड को रोकने का एक ही तरीका है जो हम कॉटन रख के आधे घंटे तक बंद करवाते हैं. दोबारा हो रही है, आप कॉटन रख सकते हैं. इवन यू कैन पुट अ टी बैग, क्योंकि टी बैग में टैनिक एसिड होता है जो ब्लीडिंग रोकता है इमीडिएट बेसिस पे. ठीक है. अच्छा, विजिट कब करना चाहिए? जब इतना खून आ रहा है कि पूरा मुंह भर जाए, दैट्स कंसर्निंग, और स्वेलिंग बढ़ती जाए, आपका मुंह इतना बंद हो जाए कि पानी भी आपको निकलने में मसला हो रहा है, थ्रोट में कोई स्वेलिंग हो रही है, तो दीज आर कंसर्निंग, विजिट करना चाहिए. वरना बाकी सब चीजें अगर आप एहतियात सही से फॉलो करें तो सब चीजें आपकी वो सेटल हो जाती है विद टाइम.
0: सही सही, बिल्कुल. डॉक्टर साहब, अभी आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाली हूं मैं. इट्स अबाउट ओरल कैंसर. तो हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा ही बताएं कि बेसिकली ओरल कैंसर होता क्या है और इसकी इब्तदाई जो अलामत होती हैं वो क्या है.
1: सो बेसिकली ये कैंसर बॉडी में कहीं भी कोई टिश्यू, जैसे एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, किसी का लिवर का एग्जाम, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है.
0: सही.
1: तो बॉडी में सिग्नल्स होते हैं कि लिवर अपनी इमीडिएट जो साइज है जितना उतना आके खुद ही स्टॉप हो जाएगा. सिग्नल्स होते हैं, स्टॉपिंग सिग्नल्स. अगर किसी जगह को आप इतना छेड़ रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं, क्या चाहे वो पान की सूरत में हो, छालिया की सूरत में हो, कोई दांत की नोक लग रही हो, या कोई आप निकलने डलने वाले का जो क्लिप होता है वो लग रहा हो, उस जगह को आप ज्यादा छेड़ते हैं तो उस जगह का स्टॉप खत्म हो जाता है.
0: सही.
1: और वो टिश्यू ग्रोथ करता रहता है, करता रहता है. तो ये जो डेफिनेशन, इट्स अ कैंसर. कोई भी चीज जिसका स्टॉप खत्म हो जाए वो ग्रोथ करती रहे, इट्स अ कैंसर.
0: सही सही. अच्छा, जैसे बहुत से लोगों को नॉर्मली भी जो है ये मसला रहता है कि दांतों में दर्द है.
1: बिल्कुल
0: सही. अब ऑल तो वो वेस्टर्न टूथ का भी कोई ऐसा मसला नहीं है, बजाहिर उनके दांत हेल्दी लग रहे होते हैं, लेकिन दांतों में दर्द की जो है वजूहात होती हैं वो क्या क्या होती हैं, किस वजह से हो रहा होता है जो डिटेक्ट नहीं हो पाती?
1: सबसे पहली चीज तो कोई दांत का अगर कीड़ा लगा हुआ, कैरीज लगी हो लेकिन वो नजर आ जाती है. सेकंड जो सबसे कॉमन चीज है वो है गम्स का मसला.
0: गम्स का मसला.
1: आप दांतों के बीच की जब सफाई नहीं करते, आपके दांतों के बीच में खाना फंसा रहता है फॉर मंथ्स फॉर इयर्स, तो वो जगह इतनी स्वेलिंग हो जाती है, उसके बाद आप ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है और वहां पर दबाव जैसा पेन फील होता है वेन एवर यू बाइट ऑन दैट एरिया. ये सबसे सेकंड जो बड़ी वजह यह है. थर्ड जो सबसे कॉमन और भी आजकल के यंगस्टर्स में है, ज्वाइंट का इशू, टीएमजे. क्यों? क्योंकि स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हुए हैं, फोन टाइम ज्यादा हो गया है रात में, आपकी स्ट्रेस एंजाइटी लेवल्स पीक पे जा चुके हैं ड्यू टू एग्जाम और एनी अदर सोशल इश्यूज, इस वजह से आपके मसल्स को आप रेस्ट नहीं दे पा रहे और इस जगह पे ज्वाइंट पे सिवियर पेन होना शुरू हो जाता है और सारी सारी रात चलता है।
0: सही सही बिल्कुल। गम्स की हेल्थ के हवाले से आपने बात की डॉक्टर साहब, अक्सर जैसे ये मसला भी होता है मसूर से खून आना, ये भी एक कॉमन जो है वो एक मसला होता है दांतों का, जिसमें जैसे अगर आपने नॉर्मली ब्रश भी किया उसमें भी आपके गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, कुछ खा रहे हैं, कुछ सॉलिड खा रहे हैं जैसे एप्पल वगैरह अगर आप खा रहे हैं उसको कट करके नहीं खा रहे ऐसे ही खा रहे हैं तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो इसकी क्या वजह होती है कि यहां से जो है हमें जो है वो सीरियस होना चाहिए अपनी दांतों की कंडीशन के हवाले से इफ गम से जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है?
1: बिल्कुल सीरियस होना चाहिए, आपकी ब्लीडिंग शुरू हुई है इट मीन्स कि इट्स अ फर्स्ट साइन, जैसे एक बुखार होता है, बुखार आप बताता है आपकी बॉडी में कोई मसला है ताकि आप उसकी दिखा दें या मेडिसिन ले लें।
0: सही।
1: गम्स का यह है कि गम्स और दांतों के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी क्लीन, गम्स दांत के साथ जुड़े होने चाहिए तभी वो हेल्दी होते हैं। अगर उनके बीच में खाना पसेगा या खाने की पसने की वजह से स्टोन्स कैलकुलस आ जाते हैं, प्लाक आ जाता है, तो गम्स इरिटेटेड होते हैं हर वक्त। अब जो भी एक टिश्यू बॉडी में इरिटेटेड होता है इट ब्लीड्स, जब भी आप उसको छेड़ेंगे आप हाथ लगाएंगे वो ब्लीडिंग होगी।
0: सही।
1: और उसका इलाज बहुत बहुत आसान है, उसका इलाज आप डेंटिस्ट को विजिट करें, उनके पास एक स्केलर होता है जो बेसिक स्केलर सबको सही से करना आता है, तकरीबन 90% डेंटिस्ट को, वो उस जगह पे हल्का सा स्केलर वाइब्रेशन और पानी के साथ घुमाएंगे आपके वो सारे बीच में जो चीजें जमा हुई है वो जैसे ही निकल जाएंगी तो विद इन अ वीक गम्स अपनी सही जगह पे बंद होंगे और ब्लीडिंग सारी स्टॉप हो जाएगी।
0: सही सही। इसी बात के साथ एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ रही हूँ, स्केलिंग जो बेसिकली होती है दांतों की जो सफाई वगैरह होती है, तो कहते हैं कि स्केलिंग से दांत जो है वो वीक हो जाते हैं और वो नहीं करानी चाहिए, तो ये किस हद तक जो है ये बात सच है?
1: काइंड ऑफ अ मिथ। एंड दूसरा ये है कि जैसे पाकिस्तान में लोग 25 साल के बाद जाके कोई मसला होता है तो भी डॉक्टर के पास नहीं आते, पहले अपनी दवाई लेंगे फिर कहेंगे किसी पड़ोसी के डॉक्टर की दवाई लेंगे फिर कोई मसला हाथ से निकल जाएगा फिर डेंटिस्ट के पास आएंगे या डॉक्टर के पास। तो इतने बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं दांतों के बीच में, जब आप उनको रिमूव करते हैं तो पेशेंट ऐसा ही फील करता है कि दांत कमजोर हो गए,
0: दांत कमजोर हो गए,
1: लेकिन अगर वो स्टोन्स नहीं निकले तो वक्त के साथ वो बढ़ते बढ़ते दांत ही खुद ही बाहर आ जाएगा।
0: सही सही। सो बेसिकली वो जो स्केलिंग के बाद जो एक फीलिंग होती है कि दांत जो
1: खाली
0: लग रहे हैं वो खाली हो जाती है जगह, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं दांत हमारे वीक हो गए या कोई हॉलो हो गया इसमें या क्या। सो ये एक बेसिकली मिथ थी कि दांत जो है कमजोर हो, बेसिकली दांत साफ हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको लाइट फील होता है और उसमें आपको ये फील होता है कि आपके दांत वीक लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी कॉमन चीज है दांतों के हवाले से अगर हम बात करें, इट्स अबाउट सेंसिटिविटी, जो कि एक बेतहाशा कॉमन मसला है। किसी को जो है वो ठंडा मतलब होता है उससे जो है इरिटेशन होती है, किसी को गर्म से होती है, किसी को कुछ तो मतलब एक यूनिक आते हैं उनको मीठा लग रहा है, नमकीन ज्यादा दांतों में लग रहा है। सही। ऐसे वैसे मीठा लगने वाले जो है वो रेयर केसेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारे पास केस वो ठंडा गर्म जो है वो मेन चीज होती है। तो सेंसिटिविटी दांतों में किस वजह से होती है, क्या इसका रीजन होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, बेहतर तरीके से इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि दांत आपके हेल्दी भी रहें और दांतों में ठंडा गर्म और इसे मीठा ना लगे?
1: ठीक है। अच्छा, दांत के जो लेयर्स हैं वो समझने की जरूरत है। दांत का जो हमें पार्ट नजर आता है इट्स अ व्हाइट लेयर एनेमल, वो बिल्कुल डेड होता है, उसमें कोई भी चीज सेंसिटिविटी आपको फील नहीं होती।
0: सही।
1: अब उस लेयर के अंदर आपके फाइबर्स होते हैं डेंटिन लेयर में जो सेंसिटिविटी को कैच करते हैं, एक वहां पे होते हैं। दूसरा, जो गम्स के अंदर रूट है उसमें भी आपका एनेमल नहीं होता जो दांत को प्रोटेक्ट करे। अब या तो किसी के मसूड़े इतने खराब हो के नीचे चले गए कि आपकी रूट एक्सपोज हुई है, वहां पे आपको ठंडा गर्म फील होगा, या तो कोई पेशेंट जैसे यहाँ पे एक हार्ड ब्रशिंग की आदत है कि हम रगड़ेंगे और हमारे ब्रश ज्यादा साफ होंगे जो कि बिल्कुल
0: exactly.
1: या डेंटोनिक यूज करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे जो मंजन यूज कर करके दांतों को घिसेंगे, तो व्हाइट लेयर जो आपका नेरो हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली अंदर वाली चीज आपको ज्यादा फील होगी।
0: सही।
1: तो ये दोनों चीजें और कोई और कीड़ा लगा है जिसमें अंदर वाला लेयर एक्सपोज हो गया, ये तीनों चीजों में आपको ठंडा गर्म ज्यादा महसूस होता है, कभी मीठा भी होता है क्योंकि सेंसिटिव फाइबर्स हैं वो कुछ भी कैच कर सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने का यह है कि अगर कोई कीड़ा लगाए तो कैरीज हो जाए, अगर वहां पे कोई गम्स नीचे चले गए तो गम्स को ऊपर लाने के तरीके होते हैं, सर्जरीज होती हैं या ऊपर लिफ्ट किया जाता है। ठीक है। या अगर एनेमल आपका वो लेयर थिन हो गया तो उस थिन को लेयर को रिप्लेस करने की जरूरत होती है। और इन सब चीजों के साथ शुरुआत में जो चीज दी जाती है कोई ऐसे टूथपेस्ट दिए जाते हैं जिसमें ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उन चैनल्स को ब्लॉक कर दें कि ताकि वो चीज मजीद खराब नहीं हो।
0: सही ओके सर, हम अपने लिस्टनर्स को बताते चले, आप सुन रहे हैं ओरल हेल्थ की बात प्लैटिनम फार्मा के साथ, विच इज ब्रॉट टू यू बाय प्लैटिनम फार्मा एंड यू आर लिस्टिंग टू डेंटल रूम। हमारे साथ डॉक्टर शरियार हामिद जो हैं वो मौजूद हैं एंड हम ओरल हेल्थ के हवाले से जो हैं वो बात कर रहे हैं एफएम 100 पाकिस्तान पर। डॉक्टर साहब, अभी जो मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाली हूं, इट्स अबाउट जो मुंह में छाले हो जाते हैं, सही है? अब कुछ छाले ऐसे होते हैं जो पेनफुल नहीं होते हैं, और इवन अगर वो हो भी जाते हैं तो इतना फील नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन जो इस तरह के व्हाइट कलर के जो छाले मुंह में हो जाते हैं और जिनका पेन नहीं फील हो रहा होता, तो क्या ये किसी संगीन बीमारी की अलामत हो सकती है?
1: कुछ चीजें होती हैं दिस काइंड ऑफ नॉर्मल, उनको चेक कराना जरूरी होता है, लेकिन कोई भी इररेगुलर चीज जो मुंह में है और वो 14 डेज से ज्यादा है तो उसका चेकअप करना बहुत जरूरी
0: होता है।
1: अगर कोई चीज वहां पे, अच्छा ये सब चीजें ऐसी हैं कि 14 डेज में हर छाले को हील होना है।
0: अच्छा,
1: अगर हील नहीं हो रहा तो इट कैन बी अ बैड थिंग, उसको चेक करवाना है। अगर वहां पे कोई नोक लग रही है तो उसको ट्रिम करवाना है। अगर आप 5 छालियां खा रहे हैं तो वो चीज स्टॉप करने की जरूरत है।
0: सही,
1: तो उसके बाद जाके उसको चेक किया जाता है कि वो इज इट नॉर्मल। अगर आपने 5 छालियां छोड़ दी, अगर आपके वो शार्प कस ट्रिम कर लिया तो उसको सही होना है 14 डेज में। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो देन उसके चेकअप्स की जरूरत होती है।
0: अच्छा, नॉर्मली मुंह के छालों की वजह ये भी समझी जाती है कि आपको अगर मैदे में गर्मी होती है, सही है, मतलब आप जो है बहुत ज्यादा गर्म चीजें खा रहे हैं, तो इसकी एक तो मेन कॉज ये होती है कि मुंह में छाले हो गए, ठीक है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसका जो एक टाइम होता है वो 14 डेज के अंदर हील होने का होता है, अगर उससे ज्यादा आपके मुंह में ये छाले जो है वो हैं, तो इट मीन्स कि आपको जो है वो चेकअप कराना जरूरी है। इस चीज को लाइटली ना लें, असल में हमारे यही होता है, बहुत सी चीजें डॉक्टर साहब हम लोग इग्नोर कर देते हैं
1: एंड
0: उसका हम वेट कर देते हैं कि नहीं चलो छोड़ो हो जाएगा खुद ही से, लेकिन यहीं पे जो हमारी गफलत होती है वो जो है आगे मजीद बीमारियों का जो है सबब बन रही होती है। तो इस चीज का ख्याल रखना होता है, ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इस चीज को सिर्फ पढ़ने की हद तक ना रखें, इस पर अमल करना भी जरूरी है, क्योंकि जाहिर है जब सेहत है तो सब कुछ है। इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब लिसनर्स को ये बताएं, जैसे मुंह के छाले अब हो गए हैं तो इसको इसके अलावा जो मैंने बताया कि जैसे मैदे की गर्मी, इसके अलावा और क्या वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से मुंह में छाले हो रहे हैं?
1: बहुत सारी वजह हैं, जो टॉप टॉप हैं आपकी, या कि आपने बता दिया कि पेप्टिक अल्सर्स हैं, मैदे में तेजाबियत है, मुंह में रात को तेजाब आता है, वो लेयर को डिस्टर्ब करता है जिससे छाला होता है। सेकंड, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अगर आप सिवियर स्ट्रेस में हैं तो उसमें भी आपके छाले होते हैं।
0: अच्छा, ओके।
1: थर्ड, डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज है, आप देखेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स या ओल्ड एज में होता क्या है कि आपकी जो थूक बनाने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है।
0: सही सही।
1: अब मुंह में जो आपका सिलाइवा है वो लेयर को प्रोटेक्ट करता है, आपके अंदर जो लेयर्स होते हैं चीक्स में, तो अगर सिलाइवा कम है, प्रोटेक्ट कम होगा, तो मिर्चें ज्यादा लगेंगी और मिर्चें छाले कराती हैं। और आपने मुंह में देखा होगा कि लाइक 60 इयर्स के बाद हर किसी को स्पाइसी फूड ज्यादा फील होता है और वो कम कर दे, उसी वजह से होता है, क्योंकि सिलाइवा रेशो कम हो जाता है उनका। तो इन चीजों को जब आप सही करेंगे, कोई भी बाहर की चीज उसको तंग नहीं करेगी, तो कभी भी कोई मसला नहीं होगा।
0: सही सही। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले, इट्स अबाउट ओरल कैंसर। तो जो लोग सिगरेट का और तम्बाकू इस सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ओरल कैंसर के चांसेस जो है वो कितने ज्यादा होते हैं? ऑब्वियसली होते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ऑब्वियसली जब एक आप सिगरेट का डब्बा परचेज कर रहे होते हैं, उस पर प्रॉपर जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है, तस्वीर बनी हुई होती है कि आपका मुंह किस तरीके से डैमेज हुआ है, लेकिन स्टिल एक मतलब ना समझने आने वाली कुछ चीजें होती हैं जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं इस चीज के बारे में।
1: स्मोकिंग जो भी करते हैं वो, या छालियां जो भी खाते हैं वो, उनका सबसे दिमाग में ये होता है कि मेरा दोस्त 20 साल से खा रहा है, उसको नहीं हो रहा। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि क्यों होता है। देखिए, कैंसर दो वजह से होता है, एक वजह है उसका कॉज और एक है रिस्क फैक्टर। कॉज है आपकी जेनेटिक्स, अगर आपकी जेनेटिक्स वीक है, इस काइंड ऑफ कोविड हर किसी को नहीं हो रहा था ना, जिसकी जेनेटिक्स वीक थी, जिसकी इम्यूनिटी वीक थी, उसको हो रहा था।
0: बिल्कुल।
1: अब किसी की इम्यूनिटी वीक है, उसके साथ आते हैं रिस्क फैक्टर्स, जिसमें आपकी स्मोकिंग आ गया, 5 छालियां गुटखा, जो भी।
0: सही।
1: जिसकी इम्यूनिटी कम होगी उसको वो जल्दी कैंसर कराएगा, और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उसको लेट कराएगा। हो सकता है किसी को ना भी कराए, लेकिन वो होते थे पहले के लोग।
0: बिल्कुल।
1: अभी जो हम लोग हैं, हमारी इम्यूनिटी, हमारी जेनेटिक्स इतनी वीक हो चुकी है कि 20-20 साल में कैंसर हो रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये तो कोई वजह भी नहीं है, ना किसी को दिमाग में सोचने की जरूरत है कि उसको नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा। किसी को कभी भी हो सकता है, और वो जब होता है तो आप माफिया मांगते हैं, जाके गिड़गिड़ाते हैं, डॉक्टर्स के पांव पड़ते हैं कि मुझे बचा लो, लेकिन उसका इलाज 100% सही नहीं होता।
0: सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि जैसे मुंह का कैंसर होता है, उसकी इब्तदाई अलामत क्या क्या होती हैं? जिसको डिटेक्ट अर्ली एज में किया जा सकता है, अर्ली स्टेज में किया जा सकता है.
1: अर्ली स्टेज में इट्स कैन बी अ अल्सर. अल्सर क्या होगा, बढ़ते बढ़ते एक छाला बनेगा, छाले से बढ़ते एक बबल बनेगा, बबल से ज्यादा कोई चीज जो होगी गाल से निकली आएगी बाहर, इरेगुलर अपीयरेंस होगी, राइट साइड लेफ्ट साइड से मैच नहीं करेगी, और पेन कभी कभी नहीं होता. आप ये मत समझे कि कभी दर्द हो तो कैंसर है, क्योंकि वो नर्व फाइबर्स को डैमेज कर देता है.
0: सही.
1: ब्लीडिंग हो सकती है, वहां पे कोई चीज खाने में लगी तो आपको ब्लीडिंग होगी और आप खा नहीं पाएंगे. ये चीजें अगर आप मुंह में देख रहे हैं, कोई इरेगुलरिटीज हैं, तो फिर तो चेकअप की जरूरत है. इट कैन बी कैंसर.
0: सही सही. मतलब ये कुछ अलामत होती हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और इस चीज से बचने के लिए, और अगर एक प्रॉपर हम जैसे उन फूड्स के हवाले से बात करें, जैसे ज्यादा एक ही चीज सुनने में आती है, ज्यादा मीठा खाना, ज्यादा चॉकलेट्स खाना, या ऐसी कोई ऐसी मीठी चीज खाना जिसकी वजह से दांत डैमेज होते हैं, तो इस चीज को कैसे, क्योंकि ज्यादा बच्चे जो हैं वो तो वैसे ही आपको पता है कि मीठा खाने के बहुत शौकीन हो रहे होते हैं और उनको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ स्वीट में चाहिए होता है, तो इस चीज से दांतों को बचाने के लिए मतलब कैसे बचाया जा सकता है, कि जो लोग अगर ज्यादा मीठा खाते हैं जिनसे नहीं कंट्रोल होता, तो दांतों को इस तरीके से कैसे सेव किया जा सकता है?
1: देखिए, मीठा तो रोक नहीं सकते. हाँ. तो सफाई की जरूरत है बेसिकली. जो मैंने देखा है, अच्छा, टूथपेस्ट के हवाले से अगर बात करें तो बच्चों के अलग होते हैं, बड़ों के अलग होते हैं. अब बच्चों का ऐसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसमें अराउंड 500 to 1000 ppm फ्लोराइड है. बच्चा उसमें लिखा गया होता है कब से यूज करना है, फ्रॉम फर्स्ट टूथ टू 2 years.
0: Okay.
1: और हम कब ब्रशिंग करवाते हैं बच्चे की, जब वो 1.5 साल का होता है, 2 साल का होता है. तो वो जो दांत शुरू में उसका 6 महीने में आया था, वो खत्म हो जाता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: मेरी अपनी बेटी है, मैंने उसका ब्रशिंग शुरू कराई थी जब पहला दांत नजर आया था. मेरी अपनी सिस्टर जब छोटी थी, मैंने उनका करवाया था, उनके कोई मसला नहीं, क्योंकि ब्रशिंग सही टाइम पे होगी. और आप जब चॉकलेट खा रहा है बच्चा, तो उसको रात को ब्रश घुमा के वो चॉकलेट निकाल के दांत को उसको सुलाना है. अगर वो दांत पे सारी रात रहेगा तो कीड़ा ही लग जाएगा और कोई मसला होगा नहीं.
0: बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जैसे आप कोई भी मतलब चेकअप के लिए आता है और डॉक्टर्स को शुबा हो जाता है कि इसको खुदा ना खास्ता मुंह का कैंसर है, ओरल कैंसर की मतलब स्टेज स्टार्ट हो गई है, तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं, इब्तदाई टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि इसको कंफर्म करने के लिए आप ये टेस्ट करें?
1: सिर्फ एक ही टेस्ट है जो कि सबको ही पता है, इट्स अ बायोप्सी. लेकिन उससे लोग इतना डरते हैं. इट्स लाइक एक कॉमन थिंग. आप कोई डिश बना रहे हैं, आप चावल बना रहे हैं, तो यू नीड टू चेक इट. आप चखते हैं थोड़ा सा पीस, आपको पता चले कि वो कैसा बन रहा है. बायोप्सी सिंपल थिंग, आप छोटा सा पीस निकालेंगे और उससे पता चल जाए कि वो चीज क्या है. अब इससे आता है और सवाल, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि बायोप्सी के बाद लोगों का दिमाग में होता है कि मेरा वो लीजन जो था, वो कैंसर था, बढ़ गया. जो कि सही है. अगर आप कैंसर को छेड़ते हैं तो वो बढ़ेगा.
0: सही
1: टाइम पे बायोप्सी हो, वो चीज को पता चले और सही टाइम पे पूरा निकल जाए, यही ट्रीटमेंट है. अगर आप बायोप्सी के डर से बैठे रहेंगे तो वो खुद इतना बड़ा हो जाएगा कि उसकी ट्रीटमेंट ही पॉसिबल नहीं होगी.
0: सही सही. तो टेस्ट कराने के लिए ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है. हाँ, बहुत से लोग बायोप्सी से, आपने सही बोला कि वो डर रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ये कराएंगे तो ये चीज और बढ़ जाएगी. और बहुत से लोगों को शायद ये भी लगता है कि पता नहीं बायोप्सी करा लेंगे तो उससे खुदा ना खास्ता डेथ हो जाएगी या क्या हो जाएगा. बहुत से लोग जो है वो मतलब इस चीज से बड़ा डरते हैं. तो जाहिर है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके फैक्ट्स होते हैं, मिथ्स होते हैं, और सही तरीके से आपको एक चीज जो है उसके बारे में जान लेना जरूरी होता है. जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो जाए, जब आपको एक चीज की नॉलेज प्रॉपर हो जाती है तो वो सारी कन्फ्यूजन्स ऑटोमेटिकली जो है वो क्लियर हो जाती है. अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग अपने लिस्टनर्स को साथ में ये भी बताएंगे जैसे कि डेंटिस्ट के पास जो है नॉर्मली कब कब विजिट करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है कभी 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे ही जा रहे हैं, बस मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं होता है. तो थोड़ा सा बताएं कि लिसनर्स को कि कब कब डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए. नॉर्मली भी अगर आपको दांतों में कोई मसला नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल हेल्थी लग रहे हैं,
1: तो इट्स लाइक एवरी 6 months. वहां के भी प्रोटोकॉल्स हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट में भी हर जगह देखा होगा. 6 months से ज्यादा वेट नहीं करें, एवरी 6 months. ज्यादा से ज्यादा मसला हो तो ईयर, इससे ज्यादा नहीं.
0: सही सही. एंड आखिर में जो है हमारे लिसनर्स को बताएं कि आप दांतों के हवाले से क्या जो है कुछ अच्छी टिप्स देना चाहेंगे ख्याल रखने की, और नॉर्मल रूटीन के हवाले से हमारे लिसनर्स को.
1: सो आपकी जैसे उंगलियां है ना, आपको डर होता है कि एक उंगली मेरी कट जाएगी, कोई मसला होगा, तो दांतों को भी ऐसा लें जैसे आपका बॉडी पार्ट है. हमने दांतों को सौतेला ट्रीट करना शुरू कर लिया, उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, क्योंकि एक तो नजर नहीं आते किसी को मुंह में, दूसरा आपको ज्यादा तकलीफ शुरू में नहीं देते, बाद में जाके देते हैं जब मसला हाथ से बढ़ जाता है. एक छोटा सा डॉट उसकी फिलिंग होगी ना, तो आप کہ اکنامیکل بھی ہوگی, آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور ان فیوچر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ اس مسئلے کو اگنور کرتے ہیں, بڑھتے بڑھتے اس لیول تک بات پہنچ جاتی ہے کہ بہت مہنگا علاج ہوتا ہے اور 100% سکسیسفل بھی نہیں ہوتا کہ لائف ٹائم چل سکے. تو دانتوں کا چیک اپ کرائیں, آپ کو اور کچھ نہیں کرنا, جسٹ چیک اپ کرائیں کسی اچھے ڈاکٹرز کو جو کوالیفائڈ ہو, جو زیادہ ڈگریز جس کی اچھی خاصی ہو, اس کو چیک اپ کرائیں, صحیح ہاسپٹل میں چیک اپ کرائیں,
0: صحیح
1: اس کو فالو کریں, اور کچھ نہیں کرنا, اور صحیح ٹائم پہ کریں. دیٹس مور دین انف.
0: صحیح, اچھا ڈینٹسٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے دانتوں کی صحت کے حوالے سے, اور آپ کو دانتوں کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے حوالے سے گائیڈ کرنے کے لیے. کچھ ایسے فوڈز اوائڈ کرنے چاہیے جو دانتوں کی صحت خراب کرتے ہیں؟
1: کوئی بھی چیز کا ایکسس آپ کی باڈی کو خراب کرتا ہے. آپ کوئی بھی فوڈ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, ایکسس میں نہ لیں. اگر آپ کوئی لیمن یوز کریں, فار ایگزامپل, ایک بندہ سارا دن لیمن یوز کرے گا نا, اس کے دانت اس کو اتنے ایبریزو, اتنے فیل ہوں گے کہ جیسے اوپر کا لیئر میرا چلا گیا ہے. سملرلی میٹھا بھی یوز کر رہے ہیں, چلے زیادہ کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. دن میں دو ٹائم صحیح طریقے سے برشنگ کریں, دانتوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا.
0: صحیح, اور برشنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فلوسنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ برش سے ہم نے جو ہے وہ دانت پراپر صاف کر لیے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. دانتوں کے بیچ میں جو چیزیں جو ہیں, جو کچرا پھنسا ہوا ہوتا ہے, جو لیفٹ اوورز پھنس جاتے ہیں, تو اس کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ فلوسنگ جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. آل رائٹ, سو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر آن ایف ایم 100 پاکستان. ہم اپنے لسنرز کو بتا دے چلیں, آپ لوگ سن رہے تھے پروگرام ڈینٹل روم, وچ واز براٹ ٹو یو بائی پلاٹینم فارما, اینڈ دانتوں کی صحت کے حوالے سے آج ہم اپنے شو پہ بات کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شریار حامد ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار گیونگ اس دس ونڈرفل نالج اباؤٹ اورل ہیلتھ. سو آپ سے چاہیں گے آپ اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.

Alrighty, everyone. Welcome back. आप सुन रहे हैं 100 पाकिस्तान. शो का नाम है जीनी और रेडियो. माय नेम इज जैस्मिन. सो इट्स 43 मिनट्स पास्ट टू ऑन द डायल राइट नाउ. आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं 3636 पर एंड facebook.com/rj.jasmin. वहां पे भी आप जो है इनबॉक्स में जाके हमें रिक्वेस्ट बता सकते हैं जो भी आप सॉन्ग जो है वो सुनना चाहते हैं. ओके, हमारे पास नूर का मैसेज है. वालेकुम अस्सलाम नूर, बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताइए आप कैसे हैं. एंड उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ट्रैक. ओके, बारी उन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया, जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके, हमारे पास पेज पर मैसेज आया है. लेट मी सी. ओके, समी शेख का मैसेज आया है हमारे पास पेज में एंड इनबॉक्स में. उन्होंने कहा है सोनिया वे बाय उमेर जसवाल, ये सॉन्ग प्ले कर दें. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ. आप बताइए आप कैसे हैं. ओके समी शेख, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ओके गाइज, अगर आप चाहते हैं आप 3636 पर भी मैसेज कर सकते हैं एंड facebook.com/rj.jasmin इस पर भी आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं. एंड यू कैन रिक्वेस्ट फॉर योर फेवरेट ट्रैक्स. राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अ शॉर्ट लिटिल ब्रेक. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहेगा

Okay, so right now we are moving on towards another track, and this is going to be the request of Nida. उन्होंने चंदवे रिक्वेस्ट किया था अली सफर का. सो मिलते हैं इस गान के बाद. समी, अगर आप मुझे एक और गाना बता सकते हैं पेज पे तो मुझे बताइए ऑप्शन में, सो हम वो भी देख लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल. दिस ट्रैक इज फॉर नदा.

0: Genie in Radio. Radio.
1: Alrighty, everyone. Welcome back. Up sunnet from 100 Pakistan, and it's 12 minutes past 3 on the dial right now. And page pe jo hai hamare paas kafi sare messages aa rahe hain. Hamare paas Naheed ne message kiya tha, and unhone request kiya tha Alpha song play kar dein. Chalein, theek hai, zarur play kar denge. Thank you so much for your message. And isi ke saath saath jo hai hamare paas Bilal ka message aaya. Waalaikum assalam Bilal. Thank you so much for your message as well. And unhone request kiya hai chal diye tum kahan. Acha theek hai, unhone kabhi main kabhi tum ka OST jo है वो रिक्वेस्ट किया है, जरूर प्ले हो जाएगा आपके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. सो पेज पे हमारे पास काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं. हम कोशिश करेंगे सारी रिक्वेस्ट जो है वो जल्दी जल्दी इंक्लूड करें, क्योंकि फिर टाइम कम होता है तो रिक्वेस्ट जो है वो रह जाती है. सो मीनवाइल वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर ट्रैक, बल्कि ट्रैक नहीं ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि टाइम जो है वो ब्रेक का आ रहा है. हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून एंड मैसेजेस करते रहिए 3636 पर एंड facebook.com/rj.jasmine इस पर करते रहिए. मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM 247. 365.
4: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

Alrighty, everyone. Welcome back. Aap sun rahe hain 100 Pakistan. We've got a message here from Zareen Noor. Walaikum assalam. Main bilkul theek hoon. Aap batayiye aap kaisi hain Zareen Noor. Aur keh rahi hain Sajjad Ali ka koi bhi song jo hai wo play kar dein. Chalein, theek hai, done ho gaya. Zaroor play kar denge aapke liye. Thank you so much for your message. Keh rahi hain aaj jo show hai wo der se suna hai, der se tune in kiya hai. Okay, it's alright. Koi masla nahi hai. Thank you so much for your message as well. Aur main aapke liye सज्जाद अली का कोई अच्छा सा सॉन्ग जो है वो लाइन अप कर लेती हूँ. ओके, बिलाल ने इसी के साथ साथ हमें मैसेज किया था एंड ही हैज रिक्वेस्टेड फॉर द सॉन्ग कॉल्ड कभी मैं कभी तुम का ओएसटी. सो बिलाल, इफ यू आर लिसनिंग, दिस ट्रैक इज फॉर यू. मिलते हैं इस गाने के बाद. हमारे साथ रहिएगा, मैसेजेस करते रहिए 3636 पर एंड जब वापस आएंगे तो ज़रीन नूर के लिए एक अच्छा सा सॉन्ग लाइन अप करते हैं विच इज बाय सज्जाद अली. कहीं नहीं जाएगा, स्टे ट्यून्ड. द ट्रैक इज द ओएसटी ऑफ कभी मैं कभी तुम.

Alrighty, everyone. Welcome back up to FM 100 Pakistan, and it's 26 minutes past 3 on the dial right now. So, Janab, हमारे पास जो है वो जरी नूर की रिक्वेस्ट आई थी. उन्होंने कहा था कि सज्जाद अली का कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा. सो हमने सज्जाद अली का एक अच्छा सा सॉन्ग आपके लिए जो लाइन अप कर लिया है. एंड व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना रीड आउट सम मैसेजेस फ्रॉम माय पेज एज वेल फ्रॉम द इनबॉक्स जो के जो है काफी सारे आ रहे हैं और रिक्वेस्ट के साथ आ रहे हैं. मजे की बात. ओके, मायरा ने हमें मैसेज किया. वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक मायरा, अल्लाह का शुक्र. आप बताइए आप कैसी हैं. ओके, इक्तदार का ओएसटी जो है कहा है ना कि इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इक्तदार का ओएसटी प्ले कर दीजिएगा. चलें ठीक है, जरूर प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. एंड इसके साथ साथ जो है खुदा बख्श ने हमें मैसेज किया है. वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र. आप बताइए आप कैसे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल. ओके, दो बोल का ओएसटी रिक्वेस्ट किया है. ठीक है, जरूर प्ले हो जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज खुदा बख्श. बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स रिक्वेस्ट ऑफ जरीन नूर. और जरीन नूर, अगर आप सुन रहे हैं ये ट्रैक आपके लिए सज्जाद अली का एक अच्छा सा सॉन्ग. मिलते हैं इस गाने के बाद. द ट्रैक इज चल चलिए.

0: एक चूटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: अम्मी, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

Alrighty, everyone, welcome back. We've got a message here from Bushra, and Bushra has requested for the song called Rafta Rafta by Atif Aslam. Okay, so Bushra, if you're listening, हम आपके लिए अभी ये थोड़ी देर में song चलाएंगे क्योंकि इससे पहले हमारे पास मान की request आई हुई है और time हमारे पास कम है. It's almost 51 minutes past 3 on the dial right now, which means कि show का time जो है वो थोड़ी सी देर में खत्म होने वाला है. So अभी हम एक और track play करेंगे, which is मान by हसन रहीम, and फिर end में जो है Bushra की request include करेंगे. Definitely कोशिश करेंगे अगर हम play कर सके तो. Meanwhile, the track is मान.

0: This program is brought to you by
1: Paypak. आज ही अपने बैंक से बनवाएं.
0: And
2: Phoenix लगा और भूल जा. Phoenix लगा और भूल जा.
1: Let's celebrate
0: 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: your location for maximum music.
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: पेपक. आज ही अपने बैंक से बनवाएं.
1: एंड
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
5: Like us on facebook.com/fm247365.
6: FM 247365.

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Battery hai to dil ko hai
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉप सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: नो पानी नो परेशानी।
1: सुकून से घर बैठे मोबाइल ऐप से बच्चों की फीस और बिल्स वगैरह सब पे कर लेता हूँ। बड़ी आसानी है मीजान करंट अकाउंट से।
2: मीजान करंट अकाउंट, अब चेक बुक, डेबिट कार्ड इश्यूएंस और पहले साल के लिए SMS अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के, और इसके साथ मिले बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज। आज ही करंट अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीजान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं। मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।

0: फायदे पे फायदा दे।
1: आइडिया, अगर आइडिया ही रह गया तो किस काम का। इंट्रोड्यूसिंग प्राइम मिनिस्टर्स स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम, अ नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग इनिशिएटिव। स्पार्क से आइडिया को ट्रांसफॉर्म करो फंक्शनल प्रोटोटाइप में, और एलिवेट से फंक्शनल प्रोटोटाइप को मार्केट रेडी सॉल्यूशन में 20 करोड़ रुपए तक फंडिंग के साथ। अप्लाई एट scgms.ignite.org.pk। लास्ट डेट 26 अक्टूबर। स्पार्क द आइडिया, एलिवेट द इम्पैक्ट। A project of Ignite, Ministry of IT and Telecom.

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: FM 247365.

0: We will be right back after this commercial break. Break.
1: मीजान करंट अकाउंट अब चेक बुक डेबिट कार्ड इशुएंस और पहले साल के लिए SMS अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के और इसके साथ मिले बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज। आज ही करंट अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीजान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं। मीजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय पेपक। आज ही अपने बैंक से बनवाएं।

0: FM 100 traffic update.
1: पाकिस्तान FM 100 पर ट्रैफिक अपडेट के साथ शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। वो तमाम ट्रैफिक जो ग्रुप चौरंगी से इस वक्त पहुंच गए और वहां से महमूदाबाद सिग्नल की जाने बाहर है, उस पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव देखा जा रहा है और गाड़ियां स्लो है। इसके साथ साथ बलोच कॉलोनी ब्रिज में वो ट्रैफिक जो शहीद मिलत रोड की जाने जा रहा है, उस पर भी ट्रैफिक का काफी ज्यादा दबाव है। इसके साथ साथ जैबुलिसा स्ट्रीट से गुजरने वाला वो ट्रैफिक जो अब्दुल्ला हारून रोड मोबाइल मार्केट और वहां से एमएकिना रोड की जानेब जा रहा है, उस पर भी ट्रैफिक का काफी ज्यादा दबाव है। लिहाजा वो तमाम लोग जिन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिल पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय पेपक।
2: आज ही अपने बैंक से बनवाएं।

0: Tonight.
1: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Battery hai to dil to hai
3: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: पानी नो परेशानी।
1: सुकून से घर बैठे मोबाइल ऐप से बच्चों की फीस और बिल्स वगैरह सब पे कर देता हूँ। बड़ी आसानी है मीजान करंट अकाउंट से।
2: मीजान करंट अकाउंट अब चेक बुक डेबिट कार्ड इशुएंस और पहले साल के लिए SMS अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के और इसके साथ मिले बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज। आज ही करंट अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीजान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं। मीजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
3: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना मिरेकल्स हैपन।
4: पेपा कार्ड है?
5: है तो फायदा है,
4: तो ऐड टू कार्ट है।
5: स्टोर
6: ऑनलाइन एनएटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे।
7: अपने टेक्नोलॉजी आइडियाज को दे उड़ान विद प्राइम मिनिस्टर्स पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम, अ नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग इनिशिएटिव। बोल्ड आइडियाज को फंक्शनल प्रोटोटाइप्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 करोड़ रुपए तक, जबकि फंक्शनल प्रोटोटाइप्स को मार्केट रेडी सॉल्यूशंस में बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए तक फंडिंग। आज ही अप्लाई करें एट segms.ignite.org.pk। आखिरी तारीख 26 अक्टूबर। स्पार्क द आइडिया, एलिवेट द इम्पैक्ट।
8: अ प्रोजेक्ट ऑफ इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम।
9: किसने कहा था पैसे बचा।

Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
1: Paybuck. Aaj hi apne bank se banwa.
0: And
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: हर शहर की मंडी में मीजान की ब्रांच है, उधर माल पहुँचा इधर पेमेंट मिली। जब से मीजान में अपना करंट अकाउंट खोला है कोई टेंशन ही नहीं।
5: मीजान करंट अकाउंट, अब चेक बुक, डेबिट कार्ड इशुएंस और पहले साल के लिए SMS अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के, और इसके साथ मिले बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज। आज ही करंट अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीजान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं। मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
6: पेपा कार्ड है
7: तो फायदा है।

like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: पानी नो परेशानी।
1: सुकून से घर बैठे मोबाइल ऐप से बच्चों की फीस और बिल्स वगैरह सब पे कर लेता हूँ। बड़ी आसानी है मीजान करंट अकाउंट से।
2: मीजान करंट अकाउंट, अब चेक बुक, डेबिट कार्ड इश्यूएंस और पहले साल के लिए SMS अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के, और इसके साथ मिले बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज। आज ही करंट अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीजान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं। मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
3: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365. Evening 5 time.

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: मीजान करंट अकाउंट अब चेक बुक डेबिट कार्ड इशुएंस और पहले साल के लिए SMS अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के और इसके साथ मिले बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज आज ही करंट अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीजान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं मीजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक
3: FM 100 100.

0: FM 100's time check. It's 8 p.m. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
1: FM 247365. FM 100.
2: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
3: You're listening to the greatest radio station.

0: facebook.com/FM247365.
1: FM247365.
2: Evening Drive Time.

It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365.

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: FM247365

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: night, my good friends.
1: The perfect view, it could be true, we've got love to share.
0: Assalamu alaikum Pakistan, assalamu alaikum mere behno, bhaiyo, dosto aur sajno. This is your good friend Muhammad Ali Shehaki, speaking to you directly from FM 100 Studios Network. And yes, you know, this program is not intended to hurt the sentiments of communities or individuals living or dead. I desire to be satirical, humorous and funny. Think of me as a little living, breathing cartoon. None of the words spoken in this show are to be taken too seriously to be true. And you must verify things heard in this show from an existing, respectable source to be true. The writers, anchors of the show plead insanity, as such bus cannot be held responsible. If some words are just too spicy or hurting to you, you may not listen to the show. Okay? Parental guidance is strongly advised. So, without much ado, hum karte hain is show ko shuru. आपको बताता चलूं कि आज के साउंड इंजीनियर और जो शो को प्रोवाइज करते हैं सत्तार भाई हैं और उन्होंने ये साउंड लिस्ट भी हमारे लिए बनाई है और मेरा भी इसमें कुछ अमल दखल होता है लेकिन उनकी अपनी चॉइस भी होती है. ऑलराइट, हियर आई कम. अच्छा, सबसे पहले मैं जो है ना अपना एक सॉन्ग जो भी लेटेस्ट है मैंने गाया है, इज अ टच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें है, मगर ये किसमें मतलब ये कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कुछ करके गुजरा हूं, किस किस चीज का सामना किया है, बिलीव करें ऐसे ऐसी मरहलों का सामने किया है जो बड़े बुलंद बुलंद पहाड़ लगते थे मगर गुजर गए. और कैसे गुजर गए आज सोच में पड़ता हूं, मैं सोचता हूं कैसे गुजर गया. तो मैंने ये चीज अपने ये हमारी शायरा हैं रानिया राय जो भालपुर के हैं और उनको ये सारी कहानी बताई तो उन्होंने ये गाना लिखकर भेजा और फिर हमने इसे कंपोज करवाया. जब इमरान साजन ने बहुत बड़ा रोल उसमें प्ले किया और इस गाने की शक्ल बनी और गाना वहां रिकॉर्ड हुआ और आपके सामने पेश करने की जसारत करता हूं. उम्मीद है आप लोग पसंद फरमाएंगे.

0: परेशानी, नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: FM247365

सुनाया। ये सॉन्ग जो आपने सुना ये कोई अंग्रेजी गाना नहीं था, ये आसिम अजहर का गाना था और पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुआ था। आसिम अजहर गा रहे थे और लगता ही नहीं था कि यहाँ का सॉन्ग नहीं है। आई थिंक कॉम्प्लीमेंट टू आसिम अजहर एंड हिज टीम। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक मेरा एक जबरदस्त एक खुद ही कह रहा जबरदस्त एक सॉन्ग था आया प्यार का मजा। बहुत अच्छे पहले मैंने गाया था, अभी लास्ट शो में एक खातून आई थी उनके साथ गाने के इत्तेफाक हुआ, मैं आपको वही सुनाता हूँ। बहुत पुरजोर फरमाइश थी और इस गाने का है प्यार का मजा, ये लिया सुने।

0: us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365. All right, my good friends, welcome back. आपने देखा मैं भी अंग्रेजी पे काफी उबूर हासिल है खैर अपनी पढ़ाई मैं नहीं करता आई एम स्टिल अ वेरी हम्बल एंड अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन आई वुड से रेडियो आई लव रेडियो बिकॉज रेडियो हैज इट्स ओन चार्म यू नो You just come here and you are the boss of the place. All the computers are on your tips. You're sitting on a chair and you have a microphone with you. You can play anything you want. But, you know, you have to follow the rules and keep the principles, company policies as well in mind. So I still love you. I thank FM 100 for giving me this chance to be talking to you directly. आप भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं बड़े आसानी से और आप कर सकते हैं 3636 को भेज दें अपने सेल फोन से है ना आप मैसेज लिखें उससे KHI स्पेस दें अपना नाम लिखें छोटे मैसेज लिखें जो मुख्तसर और उसके बाद सेंड टू 3636 वो यहां आ जाएगा मैं उसको पढ़ के आपको जवाब दूंगा फौरन ठीक है और एक और बात आपको बता दूं कि मैंने स्टेज शोज भी बहुत ज्यादा किए हैं बेतहाशा किए हैं ये अभी कोविड के जमाने के बाद थोड़ा सा चक्कर खत्म हो गया है और काफी अब कम होता है इट्स वेरी वेरी रेयर उस जमाने में जब हम गायक करते थे भाई क्वाइट यंग एंड वी हैव आवर डैडी इज ऑलवेज इन आवर माइंड्स अल्लाह उनको गरीब रहमत करे ये गाना तो आपको याद होगा जरूर और ये मैं चला रहा हूं जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट दिस इज लाइफ लाइफ है

0: 101.7 FM. Your location for maximum music.
1: Okay, bye, dear friends. Thank you very much. Coming back from the commercial break. Can't check me till there's no way to end, no reason to blame, this feeling's on fire. नहीं नहीं अभी कहाँ चला, अभी टाइम चेक चलने का टाइम नहीं है भाई, अभी भी 5 मिनट हैं.

ये कुछ आर्टिस्ट हैं जो नवल्टीज के मालिक होते हैं। अपने डैडी के जुगनी को दोबारा जगाया, हिट हुए। जुगनी का सेकेंड वर्जन बनाया, वो भी हिट हो गया। अब ये आरिफ लोहार साहब।

मैंने सोचा कुछ बातें मैं भी कर लूँ, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस हमारे भी ऐसी गुजरी है कि कुछ बीवियां अपने शौहर को ऐसे शक करती हैं जैसे दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान के साथ रह रही हैं। पति चाहे कलवा हो, पेटवा हो, सर पे एक बाल न हो, लेकिन इस भैंस की आंख उनको ऐसा लगता है कि ऋतिक रोशन के साथ रह रहे हैं। अरे जिस इंसान से जवानी में लड़की नहीं फंसी वो तो बुढ़ापे में क्या कर दिखाएगा भाई। और इसी औरतों को इस बात पे इतबार कम होता है, बल्कि इसके दोस्तों की बातों पे ज्यादा इतबार होता है कि अगर दोस्त कहते कि भाभी जी ये भैया ने ऐसा ऐसा खा लिया कि तौबा तौबा तौबा, तो ये खान भाभी जी अपनी डायरी में लिख देती हैं और वो साला जलते तवे पे बैठकर अपनी सफाई दे और पीछे से छुन छुन छुन छुन बोले, लेकिन भाभी इसकी भैंस की आंख वो इतबार नहीं करेगी जितना इसके दोस्तों की बात पे करेगी। और अगर इसके ऑफिस में अगर लड़कियां हैं तो वो सब इस पर मरती हैं, पति साला जल्दी घर चला जाए तो शक करेगा।

0: FM 100's time check. It's 12 midnight.
1: तो मैं ये बात को जारी रखता हूं कि पति चाहे घर लेट घर आए, वो शक करेगी जल्दी आए तो वो शक करेगी पति के कुर्तों में से कपड़ों में से खुशबू आए तो वो शक करेगी पति के हाँ बाल निकल आया ओहो वो शक करेगी पति ने शेविंग करवा ली तो शक करेगी पति ने बालों पे कलर करवा लिया तो शक करेगी पति के फोन पे फोन आया तो शक करेगी अरे इतना क्यों शक करती है भाई सीआईडी में जॉब कर लो एसी प्रधवन इन सबको सीआईडी में भर्ती कर लो काम आएंगे

0: your location for maximum music.
1: लड़के पूछिए भैया लड़के से
2: क्या काम करते हैं आप।
1: लड़का बोला मैडम मैं तो यार कुछ काम नहीं करता।
2: लड़की शादी कर रखी है आपने।
1: लड़का ना। लड़की कहती
2: तो शादी कर लो। तुमने सुना नहीं, तुमने सुना नहीं कि बड़ी कामयाबी कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ ही होता है। क्या पता तुम्हारी बीवी तुम्हारी कामयाबी का बायस बने।
1: लड़का कहता नहीं नहीं भाई, अच्छा जी अगर ये बात है तो आप बताइए ना जी। मोदी जी यहाँ कोई अच्छा जी तो मोदी जी वहाँ होते जहाँ आप आज हैं। नहीं और मोदी वहाँ पे होते जहाँ बैठे हैं। और तो और जो राम के बाबा है वहाँ के न होते जहाँ बैठे हैं। ये समझ में आई आपके।
2: अरे मैं तुम तो शादी नहीं करोगे इसका मतलब है।
1: लड़का अरे ना अगर कामयाब होना है तो शादी नहीं करूँगा।
2: लड़की कहती तो क्या समझते हो कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए।
1: लड़का कहता तो मुझे शराबियों का लीडर बनना है जनाब।
3: ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग अजीब अजीब जवाब देते हैं। हमारे साथ भी ऐसी फिल्में बहुत होती थी, अभी भी कुछ हैं, कुछ खत्म हो गए, छोड़ दिया है। क्या करें, ये रहना है तो नहीं के साथ रहना है भाई। अब मेरे गाने की तरफ आते हैं, क्योंकि मैं भी अपने जो गाने हैं ना क्लासिक, आजकल तो मेरे गाने क्लासिक बन गए हैं, तो ये गाना भी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा जो मैं चलाने वाला हूँ।

You know something? They've finally blocked me down. बड़ी मस्तियाँ कर रहा है अच्छा अच्छा मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया फेसबुक प्लीज हैव मर्सी ऑन मी आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर योर एंटरटेनमेंट ऑलराइट नाउ आई एम गोइंग टू सिंग माय ओन सॉन्ग एंड नोबडी कैन स्टॉप मी

सरपंच साहब थे, एक सुबह सरपंच साहब ने एक पौधा लगाया, ठीक है, दोपहर को बकरा खा गया, अरे और शाम को सरपंच साहब बकरे को खा गए। अच्छा बीवी को बनाते वक्त कहते हैं, ऊपर वाले ने बोला था कि बीवी के बनाते वक्त समझदार चुप रहने वाली बीवी दुनिया के कोने कोने में मिलेगी, और फिर दुनिया गोल बना दी और बोला बेटा अब ढूंढ के दिखाओ। क्या बात है। अब मैं अपना एक सॉन्ग चलाता हूँ, उस जमाने में ये फिल्में जो होती थी ना, फिल्म के सॉन्ग ये हैं, सॉन्ग तो रिकॉर्ड हो रहा था, फिल्म डब्बे में सीधा, ज्यादातर फिल्में डब्बों में जाती थी पाकिस्तान में, कुछ ना कुछ लग जाती थी, जिसमें से मेरी खुशकिस्मती है कि तीन फिल्में मेरी लगी और बहुत अच्छा बिजनेस भी किया हुआ, जिसमें से चोरों का बादशाह सबसे आगे है। और ये सॉन्ग जो ना खिड़की से दरवाजों से, ये सोनी और गाय दो फिल्में थी जो को प्रोडक्शन थी, मलेशिया जाके हमने शूट किया था और मंकी गार्डन में।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने, एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

शराबी हूं, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे शराबी हूं, ऐ फरिश्तों में बेहिसाबी हूं।

علی امام زمان مرتضی علی حیدر علی سا کوئی محاویر

为了